बहुत सही ये पंक्तियां थी। और दोस्तों, वाकई में ही इंसान अपने व्यवहार के कारण ही तो पहचाना जाता है। और अब अगला गीत मीना बाजार फिल्म से कुमार सानू का गाया हुआ, समीर की रचना है और कुमार नरेश शर्मा का संगीत।

सच में दोस्तों, कुछ भी नहीं तो है जिंदगी, सुख दुख की ही कहानी है। और हम अगर किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकें तो जिंदगी में ज़रूर देनी चाहिए।

दोस्तों, बहुत से गीत हमें संदेश देकर जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ध्येय जरूर बनाकर रखना चाहिए। अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने ये गीत सुना जो यही कहता है कि हमें अपने लबों पर मुस्कुराहट बनाकर रखनी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव, दुख सुख आते जाते रहते हैं। शैलेंद्र की इस गीत के लिए रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं जमीर फिल्म से गीत महेंद्र कपूर का गाया हुआ। सपन चक्रवर्ती की रचना है और सपन जगमोहन का संगीत।

फिल्म जमीर से आपने रचना सुनी महेंद्र कपूर की आवाज में, और इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चौक को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को संपन्न करने की। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 7 अक्टूबर 2026। सुबह के 5:53 और 32 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण आप सुनेंगे 6:10 से 6:44 तक। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगी पूनम आहूजा। छह बजकर 44 से 6:55 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड सुनवाया जाएगा भाग 76। 6:55 से 7 तक आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। सात बजकर 5 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 7:10 से 7:30 तक आप सुन सकते हैं पूनम आहूजा के साथ। आज सवेरे कार्यक्रम का समय है 7:30 से 8 तक और 8 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आठ बजकर 15 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 8:30 पर उर्दू में समाचार। 8:45 से आप सुनेंगे म्यूजिकल दिल लगी, आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम होगा जिसे पेश करेंगी पूनम आहूजा। 9 हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में समाचार

स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:10 से 9:45 पर। इस कार्यक्रम में राम प्रकाश वर्मा आपके साथ होंगे। ये थी आज के कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में टीईपीए की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने, तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के

समय हो चला है 6:12 और 2 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा प्रोग्राम अर्पण, जिसमें आज आप हैं पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। वैसे अर्पण, जिसमें हम आपसे मिलते हैं, ये एक ऐसा माध्यम हो जाता है, एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहरी दुनिया से उठाकर भीतर के संसार तक ले जाती है, और पूरा दिन हम किसी न किसी एक बात को सोचते रहते हैं जो हमने सुबह सुनी हो। जैसे मान लीजिए हम बात करें किसी और की, या किसी की भी जिससे आप दिन भर मिलते हैं, बैठते हैं उनके साथ, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचार जानते हैं, या यहाँ तक कि आजकल मोबाइल भी ऐसे ही हो गया है जिसके साथ हम बैठते हैं, मोबाइल में बहुत सारे रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जमा होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाने अनजाने हमारे स्वरूप को गढ़ती जाती हैं। हम कैसे होते जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा होता जाता है, ये निर्धारित करती हैं। इसीलिए ये जो इतनी सारी संभावनाएं हैं ना हमारे जीवन की, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें उन संभावनाओं को एक दिशा देने का काम करती है हमारी संगति। और संगति ये भी हो सकती है कि आप इस वक्त सुन रहे हैं अर्पण, संगति ये भी हो सकती है कि आप मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, संगति ये भी हो सकती है कि आप किसी से मिलकर उनसे बैठकर बात कर रहे हैं। तो जो भी हो, लेकिन

हमें समय समय पर ये समझना चाहिए कि ये संगति हमें कैसे प्रभावित कर रही है, इससे हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ जुड़ रहा है या फिर कुछ हट रहा है, कोई लाभ हो रहा है या कोई हानि। तो आज ये सब बातें करेंगे इसी संगति, इसी एसोसिएशन के बारे में, क्योंकि बच्चों को हम कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग, तो ये बात हमारे लिए भी वैसे ही उतनी ही लागू होती है। पहले पंडित भीमसेन जोशी जी की आवाज़ में ये भजन सुनते हैं, फिर इस बारे में और बात करेंगे।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:19 आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और हम बात कर रहे थे हमारी एसोसिएशन, हमारी संगति, हमारे साथ की, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे संगति वैसी ही हमारी रंगत, यानी वैसा ही मन। पर क्या सचमुच संगति हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है? जानते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक ही मिट्टी में दो पौधे लगाए गए। एक पौधे को प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश मिल रहा था, स्वच्छ जल था, खुली हवा थी, और दूसरे को अंधेरे कमरे में रखा गया। दोनों के बीज तो बिल्कुल एक जैसे थे, समान थे, लेकिन वातावरण अलग अलग था। अब कुछ दिनों बाद एक तो बहुत पल्लवित हो गया, बहुत सुंदर हो गया, लेकिन दूसरे का रूप बिल्कुल अलग। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, हमारे संगति में भी, कि हम किसकी संगति कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा सब कुछ बदलने लगता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगत संगते कामा कामात क्रोध अभिजायते, के जिस विषय का हम बार बार चिंतन करते हैं उसके प्रति हमारा लगाव पैदा होता है। लगाव से इच्छा, इच्छा से मानसिक परिवर्तन। तो सोचिए, अगर दिन रात ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जो शिकायतें करते रहते हैं, तो हमें भी धीरे धीरे ऐसी ही आदत हो जाती है। हमें भी हर परिस्थिति में कमी दिखाई देने लगती है। और अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हर कठिनाई में समाधान खोजते हैं, तो हमारे अंदर भी एक उम्मीद पैदा हो जाती है, आशा पैदा हो जाती है। जैसे एक युवक ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज, मेरे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं। तो महात्मा ने कहा, तुम दिन भर किसकी बातें सुनते हो? तो वो युवक चुप हो गया। तो हमारा मन एक खाली खेत की तरह है, जो बीज उसमें बार बार डालेंगे वही तो उगेगा। तो हमारा निर्णय, हमारी भाषा, हमारी प्रायोरिटीज या प्राथमिकताएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस या महत्वाकांक्षाएं, ये सभी कुछ हमारे एसोसिएशन या संगति से पैदा होती हैं। इसीलिए अपने विचारों के बारे में ये सोचिए कि कौन से विचार आ रहे हैं, और जो ये विचार आ रहे हैं उन्हें जीवन देने वाला आखिर है कौन। जब इतना सोचेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि हमारी संगति सही है या फिर हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बस उसी बदलाव के लिए जब आप तैयार रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में बदलने लगेगा।

जी हाँ, तो बात हो रही थी हमारी संगति की, जो हमारे डिसीजन या हमारे निर्णय बदल सकती है। देखिए, जीवन में हर दिन तो हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। सोचना पड़ता है कि किस पर विश्वास करें, किस रास्ते पर चलें, किस अवसर को स्वीकार करें, किससे दूर रहें। लेकिन क्या हमारे निर्णय पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर आप ये समझना चाहते हैं तो महाभारत के प्रसंग के बारे में आपको सोचना होगा, जो इस प्रश्न पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। देखिए ना, दुर्योधन के पास शक्ति थी, बुद्धि थी, अवसर थे, लेकिन उनकी संगति और उनके आसपास का वातावरण ऐसा था जो उनके निर्णयों को लगातार एक ही दिशा में लेकर जा रहा था, और जिसकी वजह से वो महाभारत के युद्ध का एक कारण बने। दूसरी ओर अर्जुन थे, जो भीषण युद्ध भूमि में खड़े तो थे, लेकिन उनके साथ उनकी संगति थी श्री कृष्ण की। तो जहां दुर्योधन के पास संगति थी शकुनी की, वहां पर अर्जुन कृष्ण के साथ थे। तो अर्जुन को भी भ्रम था, मोह था, भावनात्मक संकट था, लेकिन श्री कृष्ण की संगति की वजह से उनका भ्रम विवेक में बदल गया। तो संगति कई बार हमारी समस्याएं समाप्त नहीं करती, लेकिन हमें एक ऐसी दृष्टि दे सकती है जिससे कि हम उससे बाहर निकलने के बारे में सोच सकें। कोई अनुभवी व्यक्ति हमें एक गलत निर्णय से बचा सकता है, उनकी संगति हमें सही रास्ता दिखा सकती है। तो कई बार हम अगर किसी ऐसे के साथ होते हैं जिसके एक वाक्य से हमारे निर्णय गलत हो जाए, तो पूरी जिंदगी हमें उस निर्णय के साथ जीना पड़ता है। इसीलिए संगति चुनना वास्तव में अपने भविष्य के

जी हाँ, तो बात हो रही थी हमारी एसोसिएशन, हमारे संघ, हमारी संगति की, जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इतना कि हमारे निर्णय उसके हिसाब से हो जाते हैं और फिर पूरा जीवन उन निर्णयों के साथ, उन डिसीजंस के साथ हमें जीना पड़ता है। और ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों, ये धीरे धीरे आता है। एक छोटी सी आदत के साथ, एक मजाक के साथ, एक समझौते के साथ, एक छोटी सी बात के साथ, जो बाद में फिर बहुत ही ऑर्डिनरी या सामान्य लगने लगती है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम किसी गलत आदत में, किसी बुरी संगति में फंस गए हैं। और हम सोचते हैं कि जब मैं चाहूंगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये एक भ्रम होता है, क्योंकि हमारी संगति हमारी आदतें बना देती है। और पहले आदत हमारे हाथ में होती है, फिर धीरे धीरे हम आदतों के हाथ में चले जाते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कुसंगति या गलत लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, उनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभाव हमें हमारे उद्देश्य से दूर लेकर जाता है। तो हर रोज ही समझना जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं,

किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कौन से विचार हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं या जिन पर हम हंसते हैं, किन चीजों को हम सफल मानते हैं या किनके सफलता के दायरे हमें आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारी चेतना को आकार देते हैं। तो ये प्रश्न आप अपने आप से हर रोज कर सकते हैं। सच मानिए कि अगर जीवन बदलना है ना, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना होता है कि ये गलत वातावरण से थोड़ा सा पीछे हट जाए, और वो कुछ भी हो सकता है। वो अगर आप किसी से नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल पर ही कुछ देख रहे हैं, तो वो भी आपके वातावरण को ही बना रहा है। तो दिन भर देखना, सुनना, सोचना, ये जो सामान्य लग रहा है ना, इसके बारे में जरा ध्यान से सोचिए, गौर कीजिए कि ये कहाँ तक सामान्य है, या क्या आप ऐसे ही थे, या क्या ऐसे ही बनना चाहते हैं, या क्या यही आपके जीवन का लक्ष्य है, या इस प्रभाव से आप खुश हैं।

जी हाँ, तो बात हो रही थी संगति की कि वो हमें बिल्कुल बदल देती है। अब इसी में अगर हम बात करें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की, तो महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग सामने आ जाता है जो एक महान मिसाल बन गया। जानते हैं, एक कथा के अनुसार वो पहले रत्नाकर नाम से जाने जाते थे और बाद में बने महान ऋषि वाल्मीकि। और उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने एक ऐसे महात्मा का सानिध्य किया जिन्होंने उन्हें उनके जीवन की दिशा पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो ये कथा या ये जो प्रसंग है, ये हमें सिखाता है कि हमारी जो दिशा है वो अतीत से नहीं बल्कि हमारे आज से, हमारे वर्तमान से तय होती है। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमें हमारी पोटेंशियल या क्षमता दिखाता है, और वो कोई भी हो सकते हैं। एक शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, एक मेंटोर या गुरु हो सकते हैं, एक मित्र हो सकते हैं, कभी कभी कोई अपरिचित व्यक्ति भी हो सकता है। और उसकी कही एक बात हमारी सोई हुई चेतना को जगा देती है। तो ये जो सोच है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उनके पास जाकर बैठेंगे और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, परिवर्तन आ जाएंगे। ये तब होता है जब आप उनकी बात सुनकर उसका आत्ममंथन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसे एक्शन में लेकर आते हैं, यानी अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। तो आप सोचिए कि बच्चों को जब हम बोलते हैं कि अपनी संगति बदलो, पर क्या आप उस पर काम कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो खुद भी करना शुरू करें? तो सोचिए और इस बारे में दिन में क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर विचार कीजिए।

जी हाँ, तो आज हमने बात की संगति की और उसे बदलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम बच्चों को जो कहते हैं वो उसे नहीं सुनते बल्कि जो हम जी रहे होते हैं उसे सुनते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपकी संगति ऐसी हो, आपकी बातें ऐसी हो जो बच्चों को वास्तव में एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करें और वो आपको देख कर कहें कि मुझे भी पापा मम्मी जैसा बनना है। तो अर्पण यहीं तक, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस। पूनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिः गी पामला च अद्य भारत मण्डपम् इत्यत्र द्वितीयं भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यतः। भारत ईएफटीए व्यापारार्थिक सहमति संधेः प्रथम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे सम्मेलनमिदं आयोज्यते। अस्मिन् सम्मेलने भारतस्य तथा ईएफटीए संघटने अन्तर्भूतानां स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड लिक्टेनस्टाइन चेत्येतेषां देशानां वरिष्ठाः प्रशासकीयाधिकारिणः उद्योगक्षेत्रस्य नेतारः प्रमुखहितधारिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आर्थिक सहकारं सुदृढीकर्तुं व्यावसायिक सहमतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी सहकार नवोन्मेष चेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सार्वजनिक जीवन यात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत्, यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः च अद्य विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य संबोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः अपि उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बहुमाध्यम सम्बद्ध परिवहन योजनां सुव्यवस्थितां कर्तुम् एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं दशवर्षीय योजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रिय परिवहन महायोजनापत्रं सज्जीकरिष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्थारूपेण कार्यं करिष्यति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 कोटि रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य शैक्षणिक क्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेष् सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुरजेतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचार विनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलं 8 पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुटजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया

7:10 और ठीक 58 सेकंड आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है गोल्ड सुप्रभात, यानी आपका पसंदीदा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आपको बिस्तर से बाहर उठाकर निकालें, क्योंकि अलार्म बंद हो चुका होता है और आप जब सुबह सुबह सोच रहे होते हैं कि बस 5 मिनट और, तो ये 5 मिनट जो है ना, ये पूरे दिन पर भारी पड़ जाते हैं। इसीलिए अच्छा म्यूजिक अगर साथ है, अच्छा संगीत है, अच्छी बातें हैं, तो फिर अपने आप नींद खुल जाती है। और यही होता है गोल्ड सुप्रभात में कि आपको ऐसे ही सुबह सुबह जगाएं। वैसे अगर आप जाग चुके हैं और अर्पण सुन चुके हैं तो फिर ये बात आपके लिए बिल्कुल भी लागू नहीं है। लेकिन हाँ, बुधवार है आज, इस सप्ताह का बीच का दिन है, सोमवार की भागदौड़ पीछे छूट चुकी है, शुक्रवार अभी थोड़ा दूर है, लेकिन आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि जोश का मत होने दीजिए, मंजिल अभी सामने है। तो चाहे आप इस वक्त घर से निकलने की तैयारी कर रहे हों, ऑफिस के लिए लंच पैक कर रहे हैं, या फिर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर हैं, या चाय की प्याली के साथ हमें सुन रहे हैं, ये समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो एक छोटी सी बात से शुरुआत कर सकते हैं कि हर दिन होने वाली जो सबसे पहली बात है वो हमारे पूरे दिन को निर्धारित करती है। इसीलिए सुबह सुबह अपने आप से ये कहिए कि मैं जल्दबाजी से नहीं बल्कि अच्छी तरह से आराम से आज जीऊंगा। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और ये भी याद दिलाइए कि आप आज के दिन को अच्छी तरह से जीने वाले हैं। तो अगर भागदौड़ होगी तो कैसे जिएंगे? इसीलिए भागदौड़ को छोड़कर या अलार्म को स्नूज बटन पर ना रखकर सुबह जल्दी जाग जाते हैं तो आराम से पूरे दिन को एंजॉय कर पाते हैं। तो ये सुस्ती जो है, इसे बस छोड़ना जरूरी होता है सुबह सुबह। फिलहाल आपको याद दिला दूं कि मैं हूं पूनम आपके साथ और आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

0: मार गोरी,
1: अरे हाँ चोरी चोरी,
0: मेरा दिल निशाना बना यारो।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नींद नहीं आती हर रातों में,
2: अरे तो प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे, प्रेम छे।
3: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

7:18 और ठीक 40 सेकंड हो चले हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आप इस वक्त सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात पूनम के साथ और हम बात कर रहे थे सुबह सुबह की। वैसे सुबह सुबह एक चीज जो हमेशा हमें ताजगी देती है, स्फूर्ति देती है, वो है सूर्योदय को देखना। तो ये जो सनराइज होता है ना, ये अपने आप ही हमें एक नेचुरल तरीके से बहुत खुशनुमा बना देता है, बहुत उम्मीद मन में जगा देता है, एक आशा की किरण ले आता है। इसीलिए सुबह सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो ये जो उगता हुआ सूरज है इसे देखिए, ताकि आप इसके साथ साथ अपने आप को भी तरोताजा कर सकें और समझ सकें कि जिंदगी हर रोज एक नया दिन लेकर आती है। वैसे आज के दिन की बात करें तो सुबह सुबह तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन दिन में थोड़ी सी गर्मी होने वाली है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम पहले से तो थोड़ा सा आरामदायक है, लेकिन दोपहर की गर्मी हमें कई बार परेशान करती है। पर अक्टूबर की खासियत यही है कि सुबह का समय जो ये ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, हमें स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मन जो है वो बहुत खुशनुमा हो जाता है। और दोपहर में सूरज ये भी याद दिला देता है इस महीने में कि मैं पूरी तरह से भी गया नहीं हूँ। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे सुबह आप वॉक करते हैं, योगा करते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके लिए दोपहर की बजाय सुबह सुबह का टाइम निकालिए और खुश रहिए। बाकी सुबह उठकर सबसे अच्छा रूटीन ये होता है कि आप वॉक पर जाएं, उससे पहले कम से कम 2 ग्लास पानी पिए। मौसम के बदलाव के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट होने का समय दीजिए, यानी पानी आप थोड़ा सा गुनगुना भी कर सकते हैं इस समय, वो भी आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए और खुश रहिए, ताकि ये जो मौसम है इसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। वैसे भी इस मौसम का इंतज़ार हम पूरे साल कर रहे होते हैं कि कब ऐसा मौसम आए कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो और आप कहीं घूमने का प्लान भी बना सकें।

अच्छा बताइए, सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों का रिप्लाई होगा कि फोन चार्ज करते हैं, लेकिन एक बात कभी आपने सोची है कि खुद को भी चार्ज करना बहुत जरूरी है? और अगर आप खुद को चार्ज नहीं करते हैं तो एक और है ना जो आपका ये काम बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं, और वो है योग की क्रियाएं, जो सिर्फ शरीर को मोड़ना या कठिन आसन करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी सांस को महसूस करना, अपने आप को सुनना, मन को शांत करना भी है। तो मॉर्निंग रूटीन में 10 से 15 मिनट अगर आप निकालते हैं तो ये आपके पूरे दिन की डायरेक्शन या दिशा को बदल सकता है। शुरुआत कुछ हल्के मोमेंट से कर सकते हैं, जैसे गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग, या फिर ताड़ासन, या फिर डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि आपको किसी और को देख कर करना है। आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, इसीलिए जैसा भी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपको हर दिन इम्प्रूव करता जा रहा है। तो आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहिए कि मैं आज बहुत खुश रहने वाला हूँ, आज के दिन का बहुत स्वागत करने वाला हूँ, और बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगी, बिल्कुल तनाव नहीं होगा मुझे। तो ये वेंसडे को शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसे आप इस बुधवार को एक हेल्दी बुधवार या हेल्दी वेंसडे बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ना, लेकिन हर दिन अपने आप को थोड़ा सा बदलाव दें हम, तो फिर काफी कुछ बदलने लगता है और हम अपनी ही जिंदगी को नए तरीके से देखने लगते हैं।

जी हाँ, तो बात चाय की हो गई लेकिन नाश्ते की भी तो हो जाए। तो अक्टूबर का मौसम जो है वो धीरे धीरे याद दिला रहा है कि हमें ज्यादा इम्यूनिटी चाहिए। तो इस समय आप एनर्जी से भरा नाश्ता ले सकते हैं, वेजिटेबल पोहा खा सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, बेसन चीला ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक रखेंगी, तो प्लीज़ ये सब फॉलो कीजिएगा।

फिलहाल आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात, और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। तो फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत, नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे, और आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं तन्वी खुराना। गुड मॉर्निंग तन्वी।
1: Good morning, Devendra, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. Today is 7th of October 2026. It's a Wednesday, so a very happy Wednesday. And we are here with our daily news magazine program, Aaj Savere, just like Devendra mentioned. And we have a lot in store for all of you, so stay tuned till 8 o'clock. And let's begin our program with the news headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े अयोध्या से कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश सह प्रभारी डॉ मेधा कुलकर्णी लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद से कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will address the second India-EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam today to mark the first anniversary of the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. The summit will bring together senior government officials, industry leaders and key stakeholders from India and the EFTA states Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. To further strengthen economic cooperation, foster business partnerships and unlock new opportunities in trade, investment, technology collaboration and innovation. With the theme Building a USD 100 billion investment partnership, creating 1 million jobs in India, the summit will focus on reviewing TEPA progress, announcing new investments, strengthening industry-government collaboration and also exploring opportunities across key sectors.
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। पहले की योजना में 266 काम थे। इन कामों को चार प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जल सुरक्षा, जिसमें सबसे ज्यादा 128 काम है। इनमें चेक डैम बनाना, जल स्रोतों को बेहतर करना, नदियों और नालों का पुनरुद्धार और पानी के वितरण की व्यवस्था जैसे काम शामिल है। दूसरे हिस्से में ग्रामीण बुनियादी ढांचा है। इसके अंतर्गत 111 कामों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत तमाम काम कार्य किए जाएंगे ग्रामीण विकास के लिए। और तीसरे हिस्से में रोजगार और आजीविका से जुड़े बुनियादी ढांचे के 98 काम शामिल हैं। वहीं पहली बार आपदा की तैयारी और खराब मौसम से निपटने के लिए अलग से 38 कार्यों की सूची को भी शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सभी कार्य गांव स्तर से तैयार किए जाएंगे। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद इन्हें विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत लागू किया जाएगा।
1: Lok Sabha Speaker Om Birla said democracy grows stronger only when every voice is heard. He was speaking at the Silver Jubilee celebrations of the Goa Legislative Assembly Complex at Porvorim. Our correspondent informed that
2: India's maritime sector has been the backbone of the country's trade and has grown manifold over the years. To harness its more than 11,000 kilometer long coastline, around 14,500 kilometers of potentially navigable waterways and strategic location on key international maritime trade routes, the government launched the Sagarmala program in 2015 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The program aims to promote port-led development by modernizing ports, improving connectivity, promoting coastal shipping and strengthening coastal communities. Prime Minister Narendra Modi has emphasized harnessing India's maritime potential to drive economic growth and development.
3: Bharat Sarkar ne Rajya Sarkar ke sahyog se Sagarmala Pariyojana ke tahat port infrastructure ko upgrade kiya hai. Port connectivity ko bhi badhaya hai.
2: For Goa, a state with strong maritime heritage, extensive waterways and the Mormugao port, Sagarmala is creating new opportunities by strengthening port infrastructure, inland waterways and cruise tourism. Captain of Ports, Goa, Octavio Rodriguez told Akashvani about the work being undertaken under the Sagarmala program in the state.
4: It is going to change many jetties. Now see, another 10 jetties we are going to get, already approved. Only thing now we need to install it. They are all floating jetties which will take care of the tourism activities over there, passengers transportation system, because we are going to also come up with a auto metro. Yeah.
2: Goa has so far completed 10 Sagarmala projects with an investment of over 840 crore rupees. These projects are strengthening maritime infrastructure and improving connectivity across the state. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को पीछे न छूटने देने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन एक वैश्विक संगठन है जो मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करता है और मोबाइल ऑपरेटरों तथा मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित उद्योगों में संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है।
1: And moving towards sports, India defeated West Indies by 8 wickets in the opening T20I in Lucknow last night to take a 1-0 lead in the 5-match series. Put into bat, West Indies were bowled out for 171 in 19.1 overs. Chasing the target, India comfortably reached the target in just 14.4 overs, losing only 2 wickets. Shreyas Iyer produced a stunning unbeaten 102 off 43 balls, while Ishan Kishan remained not out on 37 from 27 deliveries. Iyer was judged the player of the match for his match-winning innings. And the second match of the series will be played in Ranchi on Friday.
0: और नोवाक जोकोविच ने पेइचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में पहला सेट 7-6 से जीता। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मेडिकल टाइम आउट लिया। कमर की चोट से जूझ रहे डी मिनोर ने दूसरे सेट का पहला गेम जीतने के बाद मैच से हटने का फैसला किया। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का, और एक एक महानगरों की खबर हम जानते हैं क्या प्रमुख खबरें हैं। तो सबसे पहले कहाँ चल रहे हैं हम? चेन्नई जी।
1: The Tamil Nadu government has constituted an additional sessions court in the city for exclusive trial of cases investigated by the National Investigative Agency, including counter-terrorism cases, espionage, aviation and maritime security, and also possession of weapons of mass destruction. The gazette notification issued by the Home Department was by the governor. The governor, after consultation with the Madras High Court, has appointed one more additional judge to the City Civil Court in Chennai. The appointment will take effect from the date on which the judge assumes charge.
0: और दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत कल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित आशा सम्मेलन 2026 और आशा सम्मान समारोह में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान जीबी पंत अस्पताल में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के भवन का वर्चुअल उद्घाटन, अनमोल पहल का विस्तार, नर्सिंग होम प्रबंधन प्रणाली का पोर्टल का शुभारंभ और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते में ऐतिहासिक थी। उपराज्यपाल ने बताया कि

0: 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 किया गया है। दिल्ली सरकार ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबी नई ड्रेन के निर्माण को स्वीकृति दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में लिया गया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना से किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलुई जाट विधानसभा क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताकर सोशल मीडिया पर फर्जी सीसीटीवी फुटेज अपलोड करके पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त मंजीत चौरान ने बताया कि नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने सामग्री पर संदेह जताया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान पता चला कि फुटेज का संचालक हरियाणा का निवासी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि संचालक ने एआई उपकरणों का उपयोग करके फर्जी फुटेज तैयार की।
1: And moving towards Bangalore, the special commissioner election in Greater Bangalore Authority, Shilpa Nag, has informed that an additional 1,117 assistant electoral registration officers have been appointed for the smooth conduct of the special intensive revision in Bangalore urban district. Addressing the media, she said that 814 hearing centres established in the jurisdiction of the electoral roll revision process in the district will have additional 1,117 assistant electoral registration officers, thereby taking the total to 1,193 officers to handle the claims and objections under SIR. The process of SIR has to be completed with disposal of claims and objections by 22nd of October, and the final electoral roll has to be published by 27th of October.
0: और बेंगलुरु से चलते हैं मुंबई की तरफ, जहां मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहर भर में कई अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी कर वैध योग्यता या पंजीकरण के बिना क्लिनिक चलाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 7 ने मुंबई नगर निगम के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर भांडुप, मानखुर्द, कुर्ला, जोगेश्वरी, बोरीवली और दहीसर स्थित क्लिनिकों पर छापेमारी की। पुलिस ने इस अभियान के दौरान करीब 22 लाख रुपए मूल्य की सिरिंज, एंटीबायोटिक गोलियां और अन्य चिकित्सा उपकरण जब्त किए। कुछ मामलों में कथित तौर पर एक्सपायर्ड दवाएं बेचकर मरीजों से अधिक फीस वसूली की जा रही थी। भांडू पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम की धारा 33 और 36 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। और महाराष्ट्र के लोक स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर के प्रमुख स्वास्थ्य पदों पर नियुक्ति के लिए प्रदर्शन आधारित प्रणाली शुरू की है, जिसके अंतर्गत अधिकारियों का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। नई नीति के अनुसार अधिकारियों का मूल्यांकन 11 मापदंडों पर किया जाएगा, जिनमें शिकायत निवारण, नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन, पोषण, मानव संसाधन, आपदाओं और महामारियों से निपटने की क्षमता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, डिजिटल सेवाएं और जिला स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। 71 से 100 अंक प्राप्त करने वाले अधिकारियों को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाएगा। और चलते हैं हैदराबाद।
1: Absolutely. Telangana Governor Shiv Pratap Shukla has said public participation is the key to the Nasha Mukt Bharat and also a TB, that is Tuberculosis Mukt Bharat. He was speaking at the Nasha Mukt Bharat program in Medak yesterday, where he flagged off a Nasha Mukti rally. The Governor said change must begin with each person. He asked everyone to resolve never to take drugs. He said the youth must play a key role as India is one of the youngest nations. He said TB is fully curable and free medicines are available at government health centers. The governor said the movement must start at home and spread to schools, villages, mandals and districts.
0: और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वैध लाइसेंस के बिना पालतू जानवरों और पक्षियों की बिक्री की अनुमति नहीं है। कोलकाता के गैलिफ स्ट्रीट और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थित व्यवसायों को संचालन के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पालन करना होगा। स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र वी घुगे और न्यायमूर्ति ओम नारायण राय की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो ये सत्यापित करे कि व्यापारियों के पास पशु और पक्षी बेचने की अनुमति देने से पहले वैध प्राधिकरण है या नहीं। न्यायालय ने सभी पक्षों को 14 अक्टूबर तक इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और अब महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 दर्ज किया गया। दिन में 33 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा तन्वी?
1: चेन्नई इज लाइकली टू सी अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 28 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस पार्टली क्लाउडी स्काई एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 21 डिग्रीज व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 31 डिग्रीज सेल्सियस। नाउ हैदराबाद इज लाइकली टू सी अ पार्टली क्लाउडी स्काई बट विद हेज। द टेम्परेचर्स are expected to range from 21 degrees to 34 degrees Celsius.
0: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की।
1: Let's begin with the year 1777, when American forces defeated British troops during the American Revolutionary War.
0: जी, और 1913 में हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए लगातार चलने वाली असेंबली लाइन का संचालन शुरू हुआ, जिसने विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला दिया। और 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। 7 अक्टूबर 1944 को अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधियों ने डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन के दौरान भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया था, जिसकी घोषणा 9 अक्टूबर 1944 को जारी की गई थी।
1: इन द ईयर 1959 द सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना द थर्ड ट्रांसमिटेड द फर्स्ट इमेजेस ऑफ द साइड ऑफ द मून दैट कुड नॉट बी सीन फ्रॉम अर्थ। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ईयर 1950, अ लिटिल बिट बिफोर 1959, देन मदर टेरेसा रिसीव्ड वैटिकन परमिशन ऑन दिस डे to establish the Missionaries of Charity in Calcutta, which is now called Kolkata. The organization began with a small group and later expanded internationally.
0: और 11 सितंबर को 2001 में आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने तालिबान और अलकायदा के ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी।
1: इन द ईयर 2001, द सेम ईयर व्हिच देवेंद्र मेंशन्ड, दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ नरेंद्र मोदी'स टेन्योर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इन 2026, दिस डेट मार्क्स 25 ईयर्स सिंस ही एंटर्ड पब्लिक ऑफिस एज द चीफ मिनिस्टर।
0: जी, और इतिहास में दर्ज इन घटनाओं के बाद अब स्मरण उन महान विभूतियों का जिनका आज जन्मदिन है, जयंती या पुण्यतिथि है और जिनके कार्यों और विचारों ने समाज को प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया। कल्पना कीजिए उस दौर की, श्रोताओं, जब देश में अंग्रेजी शासन भारत की धरती पर भारत के लोगों को ही स्वतंत्रता से जीने के अधिकारों से वंचित करती थी। ऐसे में विद्रोह करने वालों को अदम्य साहस का पर्याय माना जाता था। वीर ही नहीं, वीरांगनाएं भी साहस के साथ क्रांति का बिगुल फूंक रही थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी दुर्गावती देवी। 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में जन्मी दुर्गावती देवी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी और स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय योद्धा थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह को अंग्रेजी पुलिस की नजर से बचाकर निकालने में दुर्गा भाभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अपने छोटे बेटे के साथ भगत सिंह के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा पर निकली। ये साहस और सूझबूझ की अद्भुत मिसाल थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 1927 में लाहौर में बुलाई गई क्रांतिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा देवी ने की। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को निशाना बनाने की योजना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इस दौरान टेलर नामक एक अंग्रेज अधिकारी घायल हुआ। 15 अक्टूबर 1999 को गाजियाबाद में उनका निधन हुआ, लेकिन उनका साहस, उनका त्याग और मातृभूमि के प्रति उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो वीरांगना जिनका नाम इतिहास हमेशा सम्मान से लेगा।

एक और क्रांतिकारी केदारेश्वर सेन गुप्ता का वंदन। विद्यार्थी जीवन में ही केदारेश्वर का संपर्क अनुशीलन समिति के नेता पुलन बिहारी दास से हुआ और वे शीघ्र ही क्रांतिकारी दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे। उस समय उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व शचीन्द्र सान्याल कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी और रास बिहारी बोस के जापान चले जाने के बाद दल को संगठित करने का दायित्व केदारेश्वर को सौंपा गया। वे वाराणसी आए लेकिन पुलिस की निगरानी बढ़ते ही बंगाल लौट गए और भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां की। 1917 में वे गिरफ्तार हुए और 1919 तक

0: अलीबाग जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने रुई का व्यापार शुरू किया, लेकिन उससे होने वाली आय भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा दी। उनका जीवन और उनकी कमाई सब कुछ देश के नाम। व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए, वहां भी गिरफ्तार हुए। बरहांगपुर जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वे क्षय रोग की चपेट में आ गए। बाद में उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन घर में नजरबंद कर दिया गया। 1941 से 1946 तक उन्होंने फिर से जेल यातना सही। स्वतंत्रता के बाद कोलकाता आकर उन्होंने क्रांतिकारियों के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अनुशीलन भवन की स्थापना की।
1: मरते मरते रहा बन अब तुम्हारे हवाले।
0: केरल की धरती ने देश को कई महान स्वतंत्रता सेनानी दिए, उनमें एक प्रमुख नाम है के केलप्पन का। 24 अगस्त 1889 को कालीकट केरल में जन्मे केलप्पन राष्ट्रवादी नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। केलप्पन ने अपनी कॉलेज पढ़ाई छोड़ देश की आजादी के संघर्ष में अपना जीवन लगा दिया, जो उनके लिए शिक्षा से बढ़कर उस समय देश की पुकार थी। 1930 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना और ये उनके साहस, निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का बड़ा सम्मान था। 7 अक्टूबर 1971 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका संघर्ष और आदर्श आज भी

0: His film debut for MGM was That Midnight Kiss in 1949, and in The Toast of New Orleans, he featured a popular song, Be My Love, that became his first million-selling hit. And at the time of his death in 1959, at the age of just 38, he was still the most famous tenor in the world. And we are also talking about Edgar Allan Poe. Today is his death anniversary, an American writer, poet, editor, and literary critic who is best known for his poetry and short stories, particularly his tales involving mystery and macabre. He is widely regarded as one of the central figures of romanticism and gothic fiction in the United States and also of early American literature. Poe was one of the country's first successful practitioners of the short story and is generally considered to be one of the pioneers of the detective fiction genre. And the Mystery Writers of America presents an annual Edgar Award for distinguished work in the mystery genre. Let me just read out the first stanza of one of his poems titled A Dream Within a Dream. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow. You are not wrong. You deem that my days have been a dream. Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream.
1: Vijay Dev Narayan Sahi, एक ऐसा नाम जिसने कवि और आलोचक के रूप में साहित्य को केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि अपने समय से संवाद का माध्यम बनाया। 7 अक्टूबर 1924 को वाराणसी में जन्मे शाही नई कविता आंदोलन की महत्वपूर्ण आवाज थे। उनकी कविताएं तीसरा सप्तक में प्रकाशित होकर चर्चा में आई। उनका प्रमुख काव्य संग्रह मछली घर है। बाद में उनकी कविताएं साखी, संवाद तुमसे और आवाज हमारी जाएगी जैसे संग्रहों में प्रकाशित हुई। लेकिन साही की पहचान केवल कवि की नहीं थी, हिंदी आलोचना में उनकी पुस्तक जायसी का विशेष स्थान है। इसके अलावा साहित्य क्यों, छठवां दशक और वर्धमान और पतनशील जैसे उनकी आलोचनात्मक लेखन ने साहित्य को नए प्रश्नों और नए दृष्टिकोणों से देखने की राह दिखाई। साही की खासियत थी कि वे स्थापित साहित्यिक धारणाओं से सवाल करते थे। लघु मानव की अवधारणा और नई कविता पर उनकी बहसों ने हिंदी साहित्य में नई वैचारिक ऊर्जा पैदा की। और श्रोताओं, भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी दिलों में गूंजती रहती हैं। ऐसी ही एक अमर आवाज थी बेगम अख्तर की। 7 अक्टूबर 1914 को अयोध्या में जन्मी बेगम अख्तर का मूल नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल गायन को अपनी विशिष्ट शैली से नई ऊंचाई दी। उनकी आवाज में दर्द, मिठास और भावनाओं की ऐसी गहराई थी कि सुनने वाला सहज ही

0: Absolutely, you guessed it right. It's Chandrakanta, which came in 1994.
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अपनी सधी हुई गायकी और प्रभावी प्रस्तुति के लिए याद किए जाने वाले कलाकार थे अरुण भादुड़ी। 7 अक्टूबर 1943 को जन्मे अरुण भादुड़ी ने भारतीय संगीत की अपनी साधना और प्रतिभा के बल पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई। अरुण भादुड़ी मंच के साथ साथ रेडियो और दूरदर्शन के लोकप्रिय कलाकार रहे। देश विदेश में अनेक संगीत समारोहों में उन्होंने अपनी गायकी प्रस्तुत की। उनकी गायकी में परंपरा की गहराई के साथ अपनी विशिष्ट कल्पनाशीलता और प्रस्तुति का सुंदर मेल झलकता था। संगीत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2014 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। 17 अक्टूबर 2018 को अरुण भादुड़ी इस संसार से विदा हुए, लेकिन उनकी संगीत साधना और उनकी मधुर आवाज भारतीय शास्त्रीय संगीत की स्मृतियों में आज भी जीवंत है। अरुण भादुड़ी एक ऐसे साधक जिन्होंने सुरों को अपनी अभिव्यक्ति और संगीत को अपना जीवन बनाया।

0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देवेंद्र त्रिपाठी और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की दीजिए अनुमति.
1: Stay tuned for coming up next is समाचार प्रभात our Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
0: Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड। ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज।

0: रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
5: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ

0: कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से यह दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रूपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
1: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंप्लीट्स 25 इयर्स एज हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। यूनियन कैबिनेट पासेस रेजोल्यूशन टू कमेमोरेट दिस लैंडमार्क अचीवमेंट। गवर्नमेंट नोटिफाइज 375 परमिसिबल वर्क्स अंडर विकसित भारत जी रामजी स्कीम, मार्किंग 41% एक्सपेंशन फ्रॉम प्रीवियस 266 वर्क्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरैक्ट्स विद बोर्ड मेंबर्स ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन, सेज टेक्नोलॉजी मस्ट बिकम अ टूल फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आरबीआई टू अनाउंस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी दिस मॉर्निंग। IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
4: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy and maturity of the democracy. Mr. Vaishnaw said that Prime Minister Modi has created history that is unique in any democratic country. He said there are very few countries in the world where the people have repeatedly extended their support to a single leader. The minister said this support has been given because of his style of functioning, his right policies and his clear and good intentions. The minister highlighted 10 major points of this cabinet resolution. The first point is the expansion of the vision of development from Gujarat to the entire country. He said Prime Minister Narendra Modi introduced several changes in Gujarat through his programs and policies for which Mr. Modi was honored across the world. The Gujarat model was recognized and appreciated across the world and was subsequently implemented across India. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
3: Vice President C.P. Radhakrishnan has greeted Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of service to the nation as head of government. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, Mr. Modi's journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. He said across his visits to states and union territories, he has witnessed Bharat's visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities and inclusive development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu praised Prime Minister Modi, highlighting several core qualities that he believes makes the Prime Minister's journey exceptional. In an article in an English daily today, Mr. Naidu said clarity of vision, integrity, discipline, attention to detail and above all the ability to execute make Mr. Modi an exceptional leader. The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VVG Ramji Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. Ministry of Rural Development said the new schedule represents a 41% expansion over the 266 works under the previous framework. We have a report.
5: The works have been reorganized around four thematic pillars: water security, core rural infrastructure, livelihood related infrastructure and special works for extreme weather events and disaster preparedness. The water security pillar comprises 128 works, the highest among the four categories. It includes check dams, gully plugs, underground dikes, recharge septs, injection walls, rejuvenation of rivers, rivulets and nalas, reclamation of waterlogged land and renovation of field water distribution channels. Every work will originate through a bottom-up decentralized planning process under the Viksit Gram Panchayat plan approved by the Gram Sabha and will be tracked through the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Prime Minister Modi interacted with Global System for Mobile Communications Association GSMA board members at Seva Tirth yesterday, ahead of the India Mobile Congress. Mr. Modi stressed that democratization of technology is essential to ensure that no section of society is left behind. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The 10th edition of India Mobile Congress will begin at Yashobhoomi in New Delhi today. With the theme Scale Without Boundaries, it will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the event tomorrow. The event will feature the ministerial program on investing in the next billion digital connections, CEO roundtable on the sovereign inflection and the future of telecom, AI for good, cybersecurity summit, 6G symposium, Startup World Cup India 2026, ITU build-a-thon on AI agents for 5G networks, AI safety, India-UK panel, robotics for youth challenge and other global technology programs. It will bring together over 1.5 lakh attendees, over 500 exhibitors and partners, over 600 startups and over 900 thought leaders. Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin will address the second India EFTA Prosperity Summit 2026 at Bharat Mandapam today to mark the first anniversary of the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. The summit will bring together senior government officials, industry leaders and key stakeholders from India and EFTA states, Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein to further strengthen economic cooperation, foster business partnerships and unlock new opportunities in trade, investment, technology collaboration and innovation. With the theme Building a $100 billion investment partnership, creating 1 million jobs in India, the summit will focus on reviewing TEPA progress, announcing new investments, strengthening industry-government collaboration, and exploring opportunities across key sectors. This is Akashvani giving you the news.
6: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
3: President Draupadi Murmu is currently on a three-day official visit to Himachal Pradesh. On arriving in Bilaspur yesterday, she attended the first convocation ceremony of AIIMS Bilaspur, where she conferred medals and degrees upon meritorious students. On the second day of her visit today, the president is scheduled to visit the Atal Tunnel Rohtang. We have more from a correspondent.
7: On the second day of her three-day visit to Himachal Pradesh, President Draupadi Murmu is scheduled to visit Atal Tunnel Rohtang today. She will visit both the northern and southern portals of the tunnel and receive information about the historic tunnel from officials of the Border Roads Organization. In the afternoon, President Murmu will also offer prayers at the famous Hidimba Temple in Manali. Elaborate security arrangements have been put in place in Manali, Atal Tunnel Rohtang and surrounding areas in view of the President's visit. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Manali.
3: A 4.9 magnitude earthquake struck Uttarakhand's Chamoli district last night, sending tremors across several parts of the state and parts of Delhi NCR. According to the National Center for Seismology, NCS, the earthquake occurred at around 10:24 p.m. with its epicenter in Chamoli at a depth of approximately 13 kilometers. The Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy today, with several experts expecting a rate hike after nearly 3.5 years as inflation pressures rise due to the continuing West Asia conflict. The last repo rate hike was in February 2023, when the RBI raised the rate by 0.25% to 6.50%. It then kept the rate unchanged through 2023-24, before beginning its rate cut cycle in 2025. Currently, the RBI's policy repo rate stands at 5.25%. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जीराम जी स्कीम के तहत काबिले इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुवासलात एसोसिएशन के आलमी निजाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आलय कार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सफलता हासिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन 2001 में जनाब मोदी ने पहली मर्तबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए
2: इस तारीखी कामयाबी की याद में मरकजी काबीना ने करारदाद मंजूर की, जिसमें उनके तर्ज हुक्मरानी के सफर को उजागर किया गया। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि जनाब मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत की मजबूती का सबूत है। उन्होंने कहा कि एक आम खानदान से ताल्लुक रखने वाला ऐसा शख्स जिसने खुद को मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और मुसलसल मुल्क की खिदमत कर रहा है, जमहूरियत की ताकत, पायदारी और पुख्तगी की एक बड़ी मिसाल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने ऐसी तारीख रकम की है जो किसी भी जमहूरी मुल्क में मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहां आवाम ने मुस्तकिल एक ही रहनुमा पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अपनी हिमायत से नवाजा है। उनके मुताबिक ये हिमायत उनके काम करने के तरीके, दुरुस्त पॉलिसियों और वाजह और नेक इरादों की वजह से हुई। वजीर मौसूफ ने मरकजी काबीना की करारदाद के 10 अहम निकात को उजागर किया। पहला नुकता तरक्की के विजन को गुजरात से वसत देकर पूरे मुल्क तक फैलाने से मुतालिक है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के जरिए मुतअद्दिद तब्दीलियां मुतारिफ कराई, जिनके बाइस उन्हें दुनिया भर में एजाज से नवाजा गया। गुजरात के तरक्याती मॉडल को दुनिया भर में तस्लीम किया गया और सराहा गया, जिसके बाद इसे पूरे भारत में नाफिज किया गया। दिल्ली से कुमांदे पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि एक प्रधान सेवक के तौर पर जनाब मोदी के सफर से सबकी शमूलियत वाली तरक्की का विजन एक मुल्कगीर मिशन में तब्दील हो गया है, जिसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से रहनुमाई हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अपने दौरों में उन्होंने भारत की काबिल दीद तब्दीली देखी है। ये तब्दीली बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल तरक्की, मौकों की तौसी और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के रास्ते हुई है। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की दूरंदेश क्यादत की एक बड़ी कामयाबी यह है कि इसके तहत 25 करोड़ आवाम को इंतहाई गुर्बत से निजात हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी अहम तारीखी हुसूलियाबी है जिसे इंसानी तारीख कभी नहीं भुला सकती। जनाब राधाकृष्णन ने उम्मीद जाहिर की कि भगवान जनाब मोदी को अच्छी सेहत, खुशी और ताकत से नवाजे, जैसा कि वो भारत को सबकी शमूलियत, खुशहाली और 2047 तक विकसित भारत की जानिब सफर पर ले जाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज से अपने अवामी जिंदगी के सफर का आगाज किया था और इस साल वो अपनी अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर नितिन नबीन आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब

0: करेंगे। उनके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से इस प्रोग्राम में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी VBGRAMG कानून 2025 के तहत काबिल इजाजत कानून की फहरिस्त जारी की है। इसमें देही कामों के नए फ्रेमवर्क के तहत 375 काबिल इजाजत काम बयान किए गए हैं। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि नई फहरिस्त में पिछले फ्रेमवर्क के 266 कामों में 41% कामों की तौसी की गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इन कामों को 4 मौजूदात के तहत दोबारा बयान किया गया। ये मौजूदात हैं पानी की हिफाजत, इंतहाई दर्जे का देही बुनियादी ढांचा, गुजर बसर से मुतालिक बुनियादी ढांचा और शदीद मौसम से मुतालिक वाकयात और कुदरती आफात के तनाजुर में तैयारियों के लिए खसूसी काम। पानी की हिफाजत के तहत 128 काम बयान किए गए हैं जो 4 जुमरों में सबसे ज्यादा हैं। इसमें बांधों पर नजर रखना, नालियों पर ढक्कन लगाना, जेर जमीन सोते, पानी को वापस जमीन में पहुंचाने की शॉफ्ट्स, इंजेक्शन, कुएं, दरियाओं को दोबारा ताजा करना, छोटी नदियां और नाले जिन जगहों पर पानी जमा हो गया है उनकी बहाली, निज पानी को दूसरी जगहों पर पहुंचाने वाली नहरों की तजदीद के काम शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत और लगातार तरक्की का एक आलाकार होना चाहिए। जनाब मोदी ने कल सेवा तीर्थ में मोबाइल मुआसलात की एसोसिएशन के आलमी निजाम GSMA के बोर्ड अरकान से बातचीत की। ये बातचीत इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहली की गई जो नई दिल्ली में आज से इस महीने की 10 तारीख तक मुनाकिद की जाएगी। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सभी को टेक्नोलॉजी की फराहमी लाजमी है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि समाज का कोई भी तबका पीछे नहीं रह गया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डिजिटल खिदमात को खासतौर पर आलमी जुनूब के लिए मुनासिब खर्च और काबिल रसाई बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बढ़ते हुए डिजिटल फर्क को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी को हर एक शख्स तक पहुंचाने की अहमियत को उजागर किया। वजीर आजम ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की सलाहियत को खासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक यकसर तब्दीली लाने वाली ताकत के तौर पर उजागर किया। डिजिटल और साइबर घोटालों के बढ़ते हुए चैलेंज से निपटने के लिए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले का हल टेक्नोलॉजी से ही निकाला जाना चाहिए। वजीर आजम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए आलमी मेयारात और मुश्तरका जाब्तों की जरूरत को उजागर किया। 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज नई दिल्ली में यशोभूमि में शुरू होगी। इसका मौजू है हदूद के बगैर पैमाइश, जिसमें शराकत दारी के एक आलमी प्लेटफॉर्म, सरमायाकारी और एक दूसरे को मालूमात बहम पहुंचाने का एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करते हुए टेली मुवासलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तरा के शोबों में भारत की काबिल तहसीन तरक्की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में अगले 1 अरब डिजिटल कनेक्शन के मैदान में सरमायाकारी, कामकाज में खुद मुख्तारी और टेलीकॉम के मुस्तकबिल के बारे में CEOs की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, भलाई के लिए मसनू जहानत का इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक सरबराह मीटिंग, 6G सिंपोजियम, स्टार्टअप वर्ल्ड कप इंडिया 2026, नौजवानों को दरपेश चैलेंजों के लिए रोबोटिक्स और दीगर आलमी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गे पामिला आज भारत मंडपम में दूसरी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA प्रोस्पेरिटी समिट 2026 में शिरकत करेंगे। यह समिट भारत EFTA तिजारती और इक्तिसादी साझेदारी से मुतालिक मुआहदे की सालगिरह के तौर पर मुनाकिद की जा रही है जो गुज़श्ता बरस 1 अक्टूबर को नाफिज किया गया था। इस समिट में सरकार के आला अफसरान, सनती रहनुमा और भारत और 4 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शराकतदार शिरकत करेंगे। इस समिट का मौजू है 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी से ताल्लुक मुतालिक साझेदारी का क्याम, भारत में 10 लाख मुलाजमतों की तश्कील। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। कल बिलासपुर पहुंचकर उन्होंने एम्स बिलासपुर के पहले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत की और तलबा को मेडल्स और डिग्रियां अता की। अपने दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हिमाचल प्रदेश के अपने 3 रोजा दौरे के दूसरे दिन आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अटल टनल रोहतांग जाएंगी। वो इस टनल के शिमाली और जनूबी पोर्टल का दौरा करेंगी और सरहदी सड़कों की तंजीम के अफसरान से इस टनल के बारे में मालूमात हासिल करेंगी। दोपहर बाद सदर

0: मुर्मू मनाली के मशहूर हिरिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। मनाली अटल टनल रोहतांग और आसपास के इलाकों में सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। मनाली से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा, जिसके बारे में बहुत से माहिरीन को उम्मीद है कि तकरीबन 3.5 साल के बाद इस शरह में कोई इजाफा किया जाएगा, क्योंकि मगरबी एशिया तनाजे के सबब अफराते जर में इजाफा हो रहा है। पिछली बार रेपो शरह में फरवरी 2023 में इजाफा किया गया था। आरबीआई ने उस वक्त इस शरह में 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया था। इसके बाद आरबीआई ने 2023-24 में पूरे साल को इजाफा नहीं किया और 2025 में उसने रेपो शरह में कटौती करनी शुरू कर दी थी। आरबीआई की पॉलिसी के तहत फिलहाल रेपो रेट 5.25% है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। खुसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि गोवा में सागरमाला प्रोग्राम के जरिए किस तरह इस नजरिए को अमली शक्ल दी गई है।
0: भारत का बहरी शोबा मुल्क की तिजारत के लिए अहम तरीन रहा है। इस शोबे ने गुज़श्ता बरसों में कई गुना तरक्की की है। हुकूमत ने साल 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सागरमाला प्रोग्राम का आगाज किया, ताकि मुल्क की 11,000 किलोमीटर से ज्यादा तवील साहिल, तकरीबन 14,500 किलोमीटर जहाजरानी की आबी गुजरगाहों और तिजारत के लिहाज से अहम बैन-अल-अक़वामी बहरी रास्तों से इस्तेफादा किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुल्क की इक्तसादी तरक्की को तहरीक देने के खातिर भारत की बहरी सलाहियतों को बरूएकार लाने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
0: गोवा ऐसा शहर है जो न सिर्फ ग्रां कदर बहरी विरसे बल्कि वसी आबी गुजरगाहों का हामिल है। पणजी से महेश चौपाड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं के चलने की पेशगोई की है। भारत ने कल लखनऊ में खेले गए पहले T20 बैन अल-अक़वामी मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन ही बना सकी। अब सीरीज का दूसरा मैच रांची में जुमे को खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है असदुल्ला।
3: शुक्रिया गौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाइव होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मरकजी काबीना में 10,000 करोड़ रुपए के MSME फंड मंजूर किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि इससे छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों को तवील मुद्दती तरक्याती सरमाया फराहम किया जाएगा और MSME शोबे को फरोग हासिल होगा। 4 रियासतों में हुए जिमनी चुनाव के लिए वोटिंग पुरअमन रही, 9 अक्टूबर को नतीज का ऐलान। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, कबायली उमूर के मरकजी वजीर जुआल ओरम ने कबायली बिरादरियों से मुतालिक आईनी हकूक और कानूनी दफात पर मबनी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हुकूमत के एक सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। मरकजी काबीना ने इस अहम कामयाबी को यादगार बनाने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। हुकूमत ने विकसित भारत जीराम जी स्कीम के तहत काबिल इजाजत 375 कामों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले के 266 कामों में 41% तौसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोबाइल मुवासलात एसोसिएशन के आलमी निज़ाम के बोर्ड अरकान के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सबकी शमूलियत वाली और लगातार तरक्की का आले कार होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में पहले T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, इस तरह उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

वक्त तो चला है 8:45 और ठीक 56 सेकेंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। और ये है म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी यानी बहुत सारा म्यूजिक और बहुत सारी बातें। वैसे सोमवार की सुबह तो हम बात करते हैं ताजगी की, लेकिन बुधवार आते आते ऐसा हो जाता है कि बस कब वीकेंड आए और कब वापस हम संडे मनाएं। लेकिन बुधवार अपने आप में एनर्जेटिक रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे भरपूर जिए, अच्छी तरह से जिए। और ये मत सोचें कि आज का दिन परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि वैसे तो कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बुधवार के दिन आप जो ये प्रेशर में हैं, ट्रैफिक में हैं, या आप इस सोच में हैं कि कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं है, या ये देख रहे हैं कि मेरी चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हो रही हैं, और दो दिन से इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, तो ये समझिए कि बेशक कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन मीनिंगफुल तो हो ही सकता है। इसलिए हर सुबह अपने आप को एक नई शुरुआत देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए शरीर को थोड़ा समय आपने दिया, यानी सुबह आप योगा करके निकले, मन को थोड़ा सुकून दिया कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर बाहर आ रहे हैं, तो ये जो जज्बा है ना कि सुबह अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करके निकलने का, ये आपको हर परिस्थिति से बड़ा बना देता है। बस ऐसी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये एक बड़ी शुरुआत को अंजाम देती हैं। तो शुरुआत हो चुकी है म्यूजिकल दिल लगे में, आप हमारे साथ हैं, मैं हूं पूनम आपके साथ, और ये एनर्जेटिक सा, प्यारा सा, रोमांटिक सा गाना सबसे पहले आपके लिए।

0: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
1: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
2: पूजा,
3: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो।
4: पता ये बात अब सबको पता चल गई।
1: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
5: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: निहात बात हो रही थी सुबह की शुरुआत की, हमने आपसे कहा था कि एक हेल्दी नाश्ता इस वक्त बहुत जरूरी है, तो ये जो चाय और बिस्किट का ब्रेकफास्ट है ना, इसे छोड़कर एक बैलेंस न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। लेकिन साथ साथ और भी चीजें जरूरी हैं, जैसे सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया पर मत जाइए, पहले खुद से मिलिए। सुबह उठते ही तीन काम जो जरूरी है उन्हें लिखिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक दिन में जीतना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, सुबह उठकर किसी एक व्यक्ति को जेन्युइनली गुड मॉर्निंग कहिए, क्योंकि उनकी अच्छी एनर्जी आपकी सुबह को भी बदल देती है। और अननेसेसरली रिएक्ट करने से पहले एक डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ना, ये हमारे दिन को खुशनुमा बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, और हम फिर उस दिन को भरपूर तरीके से जी पाते हैं जो हम चाहते हैं कि आप जिए। बस हमारे चाहने में आपको साथ देना होगा, आपको उसे उसी तरह से जीने के लिए अपने आप को प्रेरित करना होगा, उसे एक्शन में

इसी खूबसूरत गाने के साथ आपको छोड़े जाते हैं हमेशा। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश करते रहिएगा। एफएम गोल्ड के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये साथ बना रहे। फिलहाल आप सुनिए समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में पारंपरिक पूजा में भी भाग लिया। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौते का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि एक समझौते के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और घाना विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। दूसरे समझौते में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और अब्लाक्वा के बीच भारत घाना साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और एक गेंद में 171 रन बनाए। भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर 102 और ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नोवाक जोकोविच ने बीजिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में पहला सेट 7-6 से जीता। कमर की चोट से जूझ रहे डी मिनोर ने दूसरे सेट का पहला गेम जीतने के बाद मैच से हटने का फैसला किया। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news.

0: और अपनों को खोने का सन्नाटा। उसी राह के ढेर से जब एक नए नेतृत्व ने जन्म लिया तो उसने कंक्रीट के पत्थरों में केवल इमारतें नहीं बल्कि भारत का आत्मविश्वास चुनना शुरू कर दिया। समय बदला, पन्ने पलटे और कच्छ के मलबे से उठा वही संकल्प जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचा तो नए भारत की नई सौगात दिखने लगी। गुजरात के स्वर्णिम संकुल के प्रशासनिक कमरों से शुरू हुई ये सोच आज नर्मदा के तट पर 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर बादलों को छू रही है। वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की धाक जमाने वाला भारत मंडपम और यशो भूमि के झिलमिलाते कांच में आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर KG सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो। G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का दे दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या? देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहां कर रहे हैं, निवेशक यहां आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, साल 2001 का कच्छ, चारों तरफ धूल, मलबे का ढेर,

0: आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
1: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चुकी हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
2: देखिये, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी। मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं है। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक हैं, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी हैं। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है, विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था। और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी, और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था। एक बहुत बड़ा टेंट, जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती। जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है, लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 का, वो हम पारित, वो वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो जिसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है, और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझे कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
1: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसी पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना। कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
0: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक। वहीं से यह यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार की जगह सत्ता में जो विनम्रता आनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है,

0: वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र, हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या। स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हमें, ये बहुत आवश्यक है। एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं आए, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है। जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जीणा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्टलक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो,

0: चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो उसका जो ड्राइवर है की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलुरु है। तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बड़ा है, लगातार बड़ा है, तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसी के पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत के एक अलग पहचान दी गई है को भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है, वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, इसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा। आखिरकार 2018-19 में इस पे काम शुरू हुआ और ये 2026 की शुरुआत में वो एयरपोर्ट चालू हो पाया। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, जो पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इस पे क्यों फैसला नहीं लिया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब राजधानी एनसीआर में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि 1 घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटते रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार सामान तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले, तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो 2 दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन 2 दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है वहाँ, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो

0: ने बनाई थी, और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे इसमें, कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है, लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62 में, 65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है, अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है, और हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त हो। पहले भी मैं गया हूं वहां तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसे जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए? और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों में, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, ये संदेश बहुत आवश्यक है, और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
2: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है, भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूँ कि हालांकि भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है, लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है।

0: क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आज तक। साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं है उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति में मनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किए जाने की जरूरत है, और भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं, और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है। तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी, और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। लुटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है, या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं, कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
2: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप उसी से प्रेरित होकर बनाया था, लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की, अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है, आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि एक तिहाई प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला, या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
0: देखिए, तीनों बातें सही हैं। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती हैं, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है

0: नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है, तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जैसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था, कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी, उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया। तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस चार अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे, तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था, फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्विक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा, आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहां पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहां पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी से हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है, और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
2: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच, लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं। और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है सुबह के 9:46 और 8 सेकेंड्स और मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगे। दोस्तों, जिंदगी हर सुबह हमें एक नया मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का और अपने सपनों को सच करने का। अगर सुबह अच्छी सोच के साथ शुरू हो तो पूरा दिन अच्छा बीतने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए बेहद ही जरूरी है कि आप बीते दिन की सारी बातें, खासकर नेगेटिव बातें भूल जाइए और सकारात्मक चीजों को देखने का नजरिया अपना लीजिए। आइए इसी खूबसूरत थॉट के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म काला पत्थर से। आवाजें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत राजेश रोशन का और बोल साहिर लुधियानवी के। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है और आज के दिन ही दुनिया भर में विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ये दिन कपास के आर्थिक और सामाजिक महत्व को पहचानने और कपास क्षेत्र से जुड़े किसानों, श्रमिकों और समुदायों के योगदान को सामने लाने का अवसर है। इस वर्ष यानी 2026 में विश्व कपास दिवस की थीम है सर्वहित के लिए कपास, व्यापार, परिवर्तन और सहयोग के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। यानी इस साल का संदेश साफ है कि कपास की असली ताकत तभी बढ़ेगी जब खेत से लेकर बाजार तक सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस विश्व कपास दिवस पर उस किसान को भी सलाम करते हैं जिसके खेत से लेकर हमारे कपड़ों तक कपास का सफर चलता है।

दोस्तों, फिल्म उपकार से ये खूबसूरत गीत आप महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुन रहे थे। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और बोल थे गुलशन बावरा के।

आज वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री एवं आपूर्ति पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसने कई पुराने करों जैसे वैट, उत्पादन शुल्क और सेवा कर को हटाकर पूरे देश के लिए एक एकल कर प्रणाली लागू की है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि आज यानी 7 अक्टूबर को बेगम अख्तर की जन्मतिथि है। आज ही के दिन सन 1914 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में उनका जन्म हुआ था। बेगम अख्तर एक मशहूर भारतीय गायिका और अभिनेत्री थीं। उन्हें मलिकाए गजल यानी गजलों की रानी भी कहा जाता है। बेगम अख्तर को सन 1972 में गायन संगीत के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए आपको सुनवाते हैं बेगम अख्तर का गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्ली यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा ठीक 10:30 पर कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।

0: और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष और पिछले 12 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पूर्व में शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as the head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as the Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as the Prime Minister. It was on this day in

0: को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। भूटान के प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक असर डालता है और भूटान जैसे देशों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों की भी सराहना की। इनमें ग्लोबल साउथ की आवाज, शिखर सम्मेलनों का आयोजन और अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की भारत की पहल प्रमुख है। श्री तोबगे ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि का पड़ोसी देशों के विकास में उसके योगदान की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने याद किया कि जून 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही सप्ताह बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भूटान को चुना था। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुडजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौते का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि एक समझौते के तहत भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और घाना विश्वविद्यालय के बीच अकादमिक क्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। दूसरे समझौते में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घाना के CSIR क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर और अब्लाक्वा के बीच भारत घाना साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। इस हमले से टैंकर पर सवार 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। रूस के परिवहन मंत्रालय के अनुसार आग की तीव्रता कम होने के बाद दमकलकर्मी इसे बुझाने का प्रयास करेंगे। यह घटना रूस के प्रमुख काला सागर तटीय पर्यटन स्थल सोची के पास हुई। रूस ने लिथुआनिया को उसके क्षेत्र में नाटो के सैन्य अड्डे और परमाणु हथियारों की तैनाती के खिलाफ चेतावनी दी है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि लिथुआनिया में नाटो के सैन्य अड्डे और परमाणु हथियारों की तैनाती से यूरोपीय महाद्वीप में अस्थिरता बढ़ेगी बल्कि इससे तनाव और भी बढ़ेगा। ये चेतावनी लिथुआनिया की संसद में कल सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन को शुरुआती स्वीकृति मिलने के बाद आई है। संशोधन पर अंतिम मतदान अगले साल जनवरी में होना है। इससे लिथुआनिया में नाटो के प्रमुख परमाणु हथियारों की तैनाती का रास्ता खुल सकता है। श्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस में पेरिस और अन्य हिस्सों में शिक्षा के लिए अधिक धनराशि की मांग कर रहे हाईस्कूल के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शनों में शामिल हुए 2.5 लाख से अधिक लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 500 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा कि सभी मामलों में पुलिस की कार्रवाई उचित थी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ प्रदर्शन दंगों में तब्दील हो गए जिसके लिए पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि सरकार और स्कूल अधिकारियों को छात्रों की चिंताओं को सुनना चाहिए और समाधान खोजने की दिशा में काम करना चाहिए। 2 सप्ताह से अधिक समय से कक्षाओं का बहिष्कार और स्कूलों की नाकाबंदी के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 6,500 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने कल कजाकिस्तान के ओस्केमेन में संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2026 के तहत युद्धाभ्यास किया। भारतीय सेना के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों ने अखमिरोवो प्रशिक्षण क्षेत्र में रास्ता तलाशने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने असली हथियारों से फायरिंग की और संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लिया। इस दौरान दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के अनुभव और बेहतर तरीकों को भी साझा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तत्काल प्राथमिकता सैन्य गठबंधन का विस्तार करने के बजाय जारी युद्ध को समाप्त करना है। आइसलैंड की विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री रूबियो ने नाटो के भविष्य में विस्तार और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमरीका की रणनीति से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि गठबंधन में किसी नए देश को शामिल करने के लिए सभी सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। माली की सेनाओं ने उत्तरी शहर किदाल पर 5 महीने बाद दोबारा कब्जा कर लिया है। इस शहर पर आजाद लिबरेशन फ्रंट और अलकायदा से जुड़े सशस्त्र समूह जमात नुसरत अल इस्लाम के अलगाववादी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्सटेनस्टीन के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के कारोबारी और प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना, व्यापारिक साझेदारियां बढ़ाना तथा निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार के नए अवसर तलाशना है। $10 खरब की निवेश साझेदारी और भारत में 1,000,000 रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पहलमा 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और EFTA के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहलमा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। इस दौरान परिवहन प्रौद्योगिकी, मोबिलिटी प्रणालियों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत।
0: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर 1 गेंद में 171 रन बनाए। जवाब में भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस के तट पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले तेल टैंकर में आग लगी। चालक दल के सभी सदस्यों को बचाया गया। फ्रांस में छात्रों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। पेरिस और देश के अन्य हिस्सों में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 MHz पर। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल का मेल बॉक्स। कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में हम अपने दिल का मेल बॉक्स आपके लिए खोल चुके हैं, तो भाई देर किस बात की, आप भी हमें जल्दी से मेल कर दीजिए अपने नाम, पते और अपनी फरमाइश के साथ। और ये मेल आपको भेजना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। आइए जब तक आपका मेल हम तक पहुंचे, तब तक हम आप तक पहुंचाते हैं ये खूबसूरत नगमा।

जी हाँ दोस्तों, तुमसे मिलना, बातें करना हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेल आप हमें भेजते हैं तो उन्हें पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे सामने मिल रहे हैं। तो भाई, जो पहला मैसेज, पहला मेल हम तक आया है, चलिए वक्त है उसे आज के कार्यक्रम में शामिल करने का। पहला मेल हमें उत्तम नगर दिल्ली से आया है और इसे लिख रहे हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। अगला मैसेज हमें आया है गगनदीप थांदी का और इनके साथ इस मेल में शामिल है तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी। ये खूबसूरत मैसेज हमें लिख रहे हैं और इन्होंने ये मैसेज लिखा है टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से। इसी के साथ हमें आफरोज शेख का मैसेज आया है, इसे नेमुआ सुपौल बिहार से ये लिख रही हैं। और इसी के साथ एक और खूबसूरत मैसेज हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। ये मैसेज लिख रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। और एक और खूबसूरत मैसेज हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आया है और इसे लिख रहे हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश। इसी के साथ एक और खूबसूरत मैसेज हमें वजीराबाद से आया है और इसे लिख रही हैं सूफिया नवाब, अरहान अहमद, शबाना और नवाब नवाब। ये मैसेज लिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अब तक हमें मेल नहीं किया है तो जल्दी से मेल कर लीजिए और हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर सुनिए ये खूबसूरत नगमा।

कारवां फिल्म से ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत आर डी बर्मन का और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के। दोस्तों, अगला मेल हमें आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से और इसे लिख रहे हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया ताहिरा। और अगला मैसेज हमें आया है अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से, लिख रहे हैं ये मैसेज, और इस मैसेज को लिखा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। और एक और खूबसूरत मैसेज हमें आया है, ये लिख रहे हैं आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा आदाब, नमस्कार। तो जी, आपको भी एफएम गोल्ड के पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा आदाब और नमस्कार। आप लिख रहे हैं कि हमें किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कीजिए, तो लीजिए, हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया। ये मैसेज लिखा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ एक और मैसेज हमें जनकपुरी सहारनपुर से आया है और इसे लिख रहे हैं जोन डेकेस्ट्रो, रोजी डेकेस्ट्रो, पर्ल डेकेस्ट्रो और विलिस डेकेस्ट्रो, ये मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ हमें रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा मैसेज कर रहे हैं और एक खूबसूरत गीत की फरमाइश भी ये कर रहे हैं। इसी के साथ हमें एक और मैसेज आया है चंडीगढ़ सिटी से और ये मैसेज लिखा है सतीश अनेजा जी ने। इन्होंने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। तो चलिए, आपकी फरमाइश पर आप तक पहुंचाते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत रविंद्र जैन का और बोल हसरत जयपुरी के। दोस्तों, कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स में वक्त है बस एक छोटे से अंतराल का।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
2: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको ड्यूअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको

0: मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
1: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
2: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
3: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। आइए आपके भेजे हुए कुछ और मेल हम शामिल कर लेते हैं आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अगला मेल हमें आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप जी का। ये मेल हमें आया है चंडीगढ़ से। और इसी के साथ एक और मैसेज हमें आया है मल्लापुर दाखा से। ये लिख रहे हैं राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, और इन्होंने एक शिकायत की है कि कई हमारे श्रोता जो हैं वो बहुत लंबा लंबा मैसेज हमें लिखते हैं, तो कृपया छोटा मैसेज लिखें ताकि और श्रोताओं के मैसेज भी शामिल हो सके। इसी के साथ एक और हमें मैसेज आया है, ये मैसेज है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से। इसे लिख रहे हैं सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, जयराम खोरवाल, और इन्होंने कहा है कि हमारा नंबर कब आएगा जी, तो लीजिए हमने आपका नाम ले लिया। और इसी के साथ एक और मैसेज हमें जसपुर उत्तराखंड से आया है, और इसे लिख रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। एक और मैसेज हमें आया है अलिंका डबवाली से, और इसे लिख रहे हैं बसंत सिंह चत्र, राजकुमार और कुलदीप गांधी। अगला मैसेज हमें सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का आया है, और इन्होंने लिखा है शांतिनगर सोनीपत से। दोस्तों, एक और मैसेज हमें अलीगढ़ से आया है, और इसे लिख रहे हैं सलीम अख्तर और बेगम अख्तर। आइए इनकी फरमाइश पर आप तक पहुंचाते हैं एक खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा ठीक 11:10 पर कार्यक्रम तस्वीर लेकर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर वे नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: और फिर मैंने जो सीखा वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां

0: मुंह बाएं खड़ी थी, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस, इट्स अ गॉन केस। तब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 2001 में इसी दिन श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग टोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री टोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और अल्पविकसित तथा विकासशील देशों के लिए भी बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली की यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस हमले से टैंकर पर सवार 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कार्यक्रम तस्वीर में।

दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है और हवाओं में हल्की हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे खुशनुमा मौसम में क्या आपका मन नहीं करता कि कहीं दूर चाय के बागानों के बीच में किसी हसीन वादी में खो जाएं? दोस्तों, आज की

तस्वीर के कैनवस पर हम जिस जगह के रंग बिखेरने वाले हैं वो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों का नाजुक सा गहना कुन्नूर। एक ऐसा शहर जहां ना तो महानगरों जैसा भारी शोरगुल है और ना ही भागती हुई जिंदगी की हड़बड़ाहट, जहां हवाओं में नीलगिरी के पत्तों की महक है और पहाड़ों में बादलों का बसेरा। तो चलिए कुन्नूर की इन महकती वादियों में कदम रखते हैं इस बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, अगर तमिलनाडु के हिल स्टेशनों की बात करें तो जहन में अक्सर ऊटी का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ऊटी से महज 19 किलोमीटर पहले पहाड़ियों की गोद में बसा ये शांत और बेहद खूबसूरत शहर कुन्नूर समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नीलगिरी जिले का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय शहर है ये कुन्नूर। नीलगिरी यानी नीले पर्वत, ऐसा कहा जाता है कि 12 साल में एक बार यहाँ पर नील कुरुंजी के फूल खिलते हैं और इसकी वजह से पूरी वादी नीली चादर ओढ़े हुए नजर आती है, इसलिए इसे नीलगिरी पर्वत भी कहा जाता है। कुन्नूर की हवाओं में एक खास ताजगी होती है दोस्तों, तो चलिए इसी ताजगी को अपनी सांसों में भरते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा तराना।

दोस्तों बात करें कुन्नूर में घूमने की उन जगहों की जो मुसाफिरों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना है, तो इस सफर में सबसे पहला नाम आता है सिम्स पार्क का। सिम्स पार्क 12 हेक्टेयर में फैला एक ऐसा प्राकृतिक बगीचा है जिसे 1874 में जेडी सिम्स और मेजर मरे ने बड़ी खूबसूरती से तराशा था। जापानी शैली में सजे धजे बगीचे, सीढ़ीदार ढलानों पर खिले हजारों रंग बिरंगे गुलाब और दुनिया भर से लाए गए दुर्लभ पेड़ इस बगीचे की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। सुबह की धूप जब यहाँ ओस की बूंदों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पर किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। दोस्तों यहाँ के फूलों की खुशबू में एक खूबसूरत सा एहसास है, बिल्कुल हमारे इस गीत की तरह।

0: दोस्तों, कार्यक्रम तस्वीर में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
2: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी, काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
3: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम तस्वीर में आप सुन रहे हैं कुन्नूर की जानकारी और वहाँ कैसे जाया जाए, वहाँ क्या क्या देखने लायक है, वहाँ की वादियाँ कैसी हैं, ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, सिम्स पार्क की महकती पगडंडियों से निकलकर आगे आप जा सकते हैं लैम्स रॉक के ऊपर। यहाँ से खड़े होकर जब आप नीचे नज़र दौड़ाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहां से नजर आते हैं मीलों दूर तक फैले कोयंबटूर के हरे भरे मैदान। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो सामने से आती हुई बादलों की टुकड़ी भी आपको अपनी आगोश में ले लेती है। यहां से थोड़ा आगे है डॉल्फिन्स नोज। इस विशालकाय चट्टान की बनावट बिल्कुल एक डॉल्फिन की नाक जैसी है। और यहां से ठीक सामने नजर आता है कैथरीन फॉल्स। दो पहाड़ों में सैकड़ों फीट नीचे गिरता इस झरने का पानी जब शांत वादियों से गूंजता है तो मन भी खुशी से झूम उठता है।

दोस्तों, बात अगर कुन्नूर की हो और यहाँ की टॉय ट्रेन का जिक्र ना हो तो ऐसा लगता है कि बात पूरी ही नहीं हुई। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ये हेरिटेज ट्रेन जब अपने पुराने भाप के इंजन के सहारे छुक छुक करते हुए फूलों की वादियों, सुरंगों और चाय के बागानों के बीच गुजरती है तो ये सफर जिंदगी भर के लिए यादगार सफर बन जाता है।

दोस्तों, अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो कुन्नूर में स्थित ड्रुग फोर्ट जरूर जाइएगा। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान की सेना इस किले का इस्तेमाल एक सैन्य चौकी के रूप में किया करती थी। इसके अलावा यहां से सटा हुआ वेलिंगटन कंटोनमेंट इलाका अपनी असीम सफाई, पुराने कॉलोनियल बंगलों और मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग बेहद ही सीधे, मेहमान नवाजी में आगे और सादगी पसंद होते हैं। यहाँ की जिंदगी में एक ठहराव और एक सुकून साफ नजर आता है।

दोस्तों, जब आप किसी हसीन सफर पर हो तो वहां के जायके को चखे बिना वो सफर मुकम्मल नहीं होता। बात करें खाने पीने की तो सुबह सुबह यहाँ गर्मा गर्म इडली, कुरकुरे, मेदू बड़े और नारियल की ताजा चटनी तो लाजवाब होती ही है, लेकिन कुन्नूर की अपनी एक खास पहचान है यहाँ की कुन्नूर वर्की से। ये एक खास तरह का क्रंची बेक किया हुआ बिस्किट है जो यहाँ की हर बेकरी में मिलता है। इसके अलावा यहाँ की होममेड चॉकलेट्स भी काफी स्वादिष्ट होती हैं। और हाँ, आप यहाँ की हाई फील्ड टी फैक्ट्री जाकर ताजी पत्तियों की चाय बनते देखना और गर्मा गर्म कड़क नीलगिरी चाय की चुस्की लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चाय को पीकर सारी थकान छूमंतर हो जाती है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: नींद नहीं आती है रातों में,
2: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम तस्वीर सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, कुन्नूर की हसीन वादियों की बात करें तो यहाँ पर हमने यहाँ कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या खा सकते हैं, ये सब जानकारी हमने प्राप्त कर ली। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर कब और कैसे पहुँचा जाए। तो आपको बता दें कि कुन्नूर जाने का सबसे शानदार समय यही है जो अभी चल रहा है। जी हाँ, अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा समय है कुन्नूर जाने का। इसके अलावा आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कभी भी यहां घूमने के लिए जा सकते हैं। बात करें कि यहां कैसे पहुंचा जाए, तो आप यहां जाने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों तरीके से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो यहां का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है कोयतम्बूर। यहां से कुन्नूर लगभग 70 किलोमीटर दूर है, तो आप एयरपोर्ट के बाद लोकल टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहां का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है मेट्टुपलयम। यहां से आप टॉय ट्रेन लेकर कुन्नूर आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप रोड का चुनाव करते हैं यानी सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं, तो आप कोयम्बतूर, ऊटी या बेंगलुरु से यहां के लिए शानदार और खूबसूरत सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुन्नूर जाना है तो हल्के गर्म कपड़े जरूर साथ ले जाइएगा। और याद रहे, यहां पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है, इसलिए यहां पर इको फ्रेंडली चीजों का ही इस्तेमाल करिएगा।

दोस्तों, सफर सिर्फ नई जगह को देखना या नए लोगों से मिलने का नाम नहीं है। एक अच्छी यात्रा हमें खुद से भी मिलवाती है। जब आप कुन्नूर की किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर दूर धुंध में टॉय ट्रेन को जाते हुए देखते हैं, तो समझ में आता है कि भागती हुई जिंदगी में कुछ पल ठहरना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम तस्वीर में हमने कुन्नूर की जो तस्वीर आपके सामने रखी, उम्मीद है उसने आपके मन में भी एक नई ताजगी भर दी हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन

0: ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that the trust of the people and the dedication of millions of party workers have been his greatest sources of strength. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that the people's trust accumulated over 25 years and the experience gained during this period are a great asset. The Prime Minister also said that this is the time to set big targets for Bharat. Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, Mr. Modi said that the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: Prime Minister Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. After nearly 3.5 years, the Reserve Bank of India today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst

और आंगन। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। बातों मुलाकातों के इस सफर में मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। तो पहले वो बात जो है कार्यक्रम की शुभ शुरुआत, आज का सुविचार। श्रेष्ठ कर्म ही भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी है, ये है हमारा आज का सुविचार। दोस्तों, वर्तमान समय हमारे हाथ में होता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, सब कुछ हमारे आज के प्रयास से तय होता है दोस्तों। इसलिए भविष्य की चिंता में समय गंवाने की बजाय समय का सदुपयोग करना और सही दिशा में कदम उठाना ही हमारे आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाता है। इसलिए वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ काम ही भविष्य की मजबूती का सामान तैयार करता है। और हमारा आज का पुरुषार्थ

कल का भाग्य है ये हम जानते हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करना, सही दिशा में कदम उठाना और आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाने का तरीका इसके अलावा और कोई सा है नहीं। तो FM गोल्ड सुनने की इस अच्छी आदत को आप बरकरार रखें हमारे साथ, यानी 100.1 MHz पर आपके लिए जानकारी और मनोरंजन का ये सफर जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24/7 पे भी जुड़ सकते हैं आप। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको आज का सवाल। आज आपको बताना है स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि उस आदत से हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाते हैं? सोचिए और लिख भेजिए अपने जज्बात fmgoldga@gmail.com पे। आपके जवाबों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले हम सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, निगाहों की चमक आपकी बरकरार रखते हुए अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सफर की तरफ। और आज इतिहास के पन्नों में हम लेकर आए हैं दो ऐसी हस्तियों की कहानी जिनकी आज जयंती है। अपनी ताकत और आवाज से आजादी की लौ को जलाए रखने वाली उनमें से एक हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी हम जानते हैं। भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकालने और क्रांतिकारियों के लिए हथियार लाने ले जाने का साहसिक काम करने वाली इस वीरांगना को उनके जयंती पर शत शत नमन करते हैं। और दूसरी हैं मल्लिका गजल बेगम अख्तर साहिबा जी, जिनकी जादुई आवाज संगीत जगत के चाहने वालों को ही नहीं बल्कि आजादी के दीवानों को भी अपनी ओर खींचती थी। और विदेशी हुकूमत के खिलाफ अपनी गायकी को हथियार बनाना बेगम अख्तर साहिबा का अंदाज था। गजल, ठुमरी, दादरा और शास्त्रीय संगीत के जरिए अपने सुरों को अभिव्यक्त करने वाली बेगम अख्तर की गजल गायकी ने उन्हें मल्लिका ए गजल बनाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी नमन करते हैं। और फिर से आपको याद दिला देते हैं दोस्तों, आज का सवाल, जिसमें आपको बताना है आज की स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की हमें जरूरत है, आपको क्या लगता है। और लिख भेजिए हमें अपने विचार, अपनी बात fmgoldga@gmail.com पर।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आपने इस खूबसूरत से गीत को सुना। दोस्तों, सौंदर्य को चार चांद स्वर्ण आभूषण लगाते हैं और शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में परिधान अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, खासकर आरामदायक परिधान। और कपड़ों को आरामदायक बनाने में जिस प्राकृतिक स्रोत का योगदान सबसे ज्यादा है वो है सफेद सोना, यानी कि कपास। और जानते हैं आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज है विश्व कपास दिवस। साल 2019 में विश्व व्यापार संगठन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, और 2021 से इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। और चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक हैं और कृषि प्रधान हमारे देश में बहुत से किसान कपास की इस प्राकृतिक खेती से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए आज का दिन हम इस सफेद सोने को समर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कपास से बने सूती कपड़े हल्के होते हैं, उसी के साथ साथ वो हमारी त्वचा के तापमान को भी नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। इसके जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए नवजात शिशुओं को सूती के कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना? याद कीजिए, हम सब ऐसा ही करते हैं ना? और न सिर्फ कपड़े बल्कि रुई, बैंडेज, पशुओं का चारा, तेल, गद्दे, कुशन, अखबार, कागज और यहाँ तक कि हमारी नोट, सब कुछ कपास से ही तो बनता है ना? तो प्लास्टिक और सिंथेटिक के इस दौर में पर्यावरण अनुकूल कपास के प्राकृतिक रेशे और उसके फायदों के लिए जागरूक करना ही आज के दिन का उद्देश्य है और यही हम कर रहे हैं। तो आइए प्रकृति के इस अनूठे उपहार को हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए आगे बढ़ाएं।

साथियों, इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आनंद महन फिल्म से और गायक थे यशुदास। और साथियों, अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न में आए हुए उन हमारे साथियों के बारे में जिन्होंने अपने संदेश लिख भेजे हैं हमें। और आपको याद दिला दें, हमारा प्रश्न है कि स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की ज़रूरत है। और इस बारे में हमारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने अपने संदेश हमें लिख भेजे हैं, उनमें हमारे पहले श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी, और उन्होंने अपना विचार लिखा है कि भाई, रोड पे कचरा ना फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए और यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा अगला जो संदेश है वो है चरणदास जी का। उन्होंने कहा है कि ये काम सचमुच में बहुत अच्छा है और ये जागृति के लिए आप लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इस तरीके के विषयों को सामने लाते हैं। एफएम गोल्ड की तारीफ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सफाई के साथ साथ हमें आसपास के वातावरण को भी विशेष रूप से साफ रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इन विचारों के साथ आपने ये भी बोला है कि 30 साल से अपने घर घर के बाहर चौक में आधा घंटा रोज़ाना वो सफाई करते हैं और ऐसा करके वो आसपास की गंदगी को जहाँ भी दिखती है उसे दूर करते हैं। और देखिए कितना सुंदर भाव है इनका। बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अगर हर नागरिक सोचने लगे तो आसपास स्वच्छता ही स्वच्छता दिखने लगे, है ना। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी उस बात के बारे में जो है एक विशेष प्रेरणा भरी कहानी। साथियों, प्रेम के कितने ही रूप हमारी धरती को संवारते आए हैं, वैसे ही वात्सल्य से भरे प्रेम की एक कहानी आज मैं आपको बता रही हूँ। वो है ओडिशा

प्रांत की समाज सेविका आभा रानी चौधरी के। उनके वात्सल्य प्रेम की कहानी शुरू हुई 2003 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जब वो ओडिशा के झाड़पारा जेल के कैदियों से मिलने गई तो वहां उन्होंने देखा उनके साथ उनके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं जो बिना किसी कसूर के जेल की चार दीवारी में रहने को मजबूर हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि बिना किसी जुर्म के इन बच्चों का बचपन जेल की इन चार दीवारी के बीच दम तोड़ रहा है, और इसी घटना ने उनके मन में बच्चों के प्रति असीम वात्सल्य को भरा। उन्होंने भुवनेश्वर में मधुरमय आदर्श शिक्षा निकेतन की शुरुआत की और उन बच्चों को और ऐसे ही तमाम बच्चों को सहारा देने का काम शुरू किया। उनके लिए एक अच्छा घर, उनके लिए बेहतर संस्कार और अच्छी शिक्षा, और साथ ही साथ माँ का प्यार दुलार, ये सब कुछ देने का प्रयास वो कर रही हैं। पिछले 23 सालों में 200 से ज्यादा कैदियों के बच्चों को आभा रानी ने पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया है, और मातृत्व से भरी उनकी मातृमयी सोच ने सलाखों के पीछे सिसकते बचपन को एक नया सवेरा दिया है। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने ना, कि हो सके तो किसी का सहारा बनो और डूबती हो कश्तियां तो किनारा बनो। तो चलिए खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं।

बुलंदी फिल्म से आप आशा और किशोर जी को सुन रहे थे इस फिल्म में और इस प्यारे से गीत में। साथियों, हम जो भारतीय हैं वो संस्कृति के साथ जीवन को जीते हैं और इसीलिए हर मौसम में हमारे यहाँ त्योहार और पर्वों की झलक और उनके पीछे गहरे जीवन दर्शन का संदेश हम देखते हैं, है ना। और यही जीवन मूल्य जो हैं वो हमें संस्कारों से बांधते हैं। जैसे इन दिनों हमारे पूर्वजों और पितरों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का अवसर ये श्राद्ध का समय चल रहा है, जिसे हम पितृ पक्ष भी मानते हैं। पूर्वजों द्वारा मिले जीवन संस्कारों और उनके उपकारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए इन दिनों हम ये दिन मना रहे हैं, यानी कि पितृपक्ष मना रहे हैं। श्राद्ध का मतलब ये होता है दोस्तों कि श्रद्धा से किया जाने वाला पावन कर्म। और हम जानते हैं ना कि जीवन चक्र जो है वो जीवन के नियम से जुड़ा है, और ये जो समय है श्राद्ध का वो हमें पूरी तरह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखलाता है। और तभी तो इन दिनों हम अपने पूर्वजों को अर्पण और तर्पण करने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचते हैं। अर्पण तर्पण का अंश जो हम अपने पितरों के लिए निकालते हैं वो पशु पक्षी और जीवों को अर्पित करते हैं, ताकि उनकी तृप्ति के द्वारा हमारे पूर्वज संतुष्ट हो सकें और हमें अपना आशीष दें। भागती दौड़ती जिंदगी में भाई हमारे पर्व हमें कुछ पल रुककर जीवन को समझने और संवारने का अवसर देते हैं। इसीलिए अर्पण तर्पण के संस्कारों को बांधने वाला जो श्राद्ध पक्ष है वो अपने पूर्वजों की याद में और सभी जीवों के प्रति श्रद्धा और उनकी तृप्ति की बात में हमें जीवन का गुर भी सिखलाता है।

काजल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, हमारा आज का सवाल, जिसके लिए बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं, और वो सवाल है, स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की ज़रूरत आपको लगती है, जिसे आपने अपनाया है और आपको लगता है कि दूसरे भी इससे प्रेरित हों। और इसके लिए संदेश हमारे पास है गौरीशंकर वर्मा जी का, जिन्होंने लिखा है कि भाई, सफाई की शुरुआत घर से होती है। अगर हम खुद घर में सफाई रखेंगे तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा, और घर और बाहर दोनों का ध्यान अगर हम रखेंगे सफाई के लिए तो ये हमारी आदत बन जाएगी, और स्वच्छता शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये बहुत सुंदर सी बात इन्होंने लिखी है, गौरीशंकर जी ने नांगलोई से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपके इस इतने बेहतरीन संदेश को भेजने के लिए। और वैसे ही हमारे पास है संदेश अफरोज शेख का, जो सुपौल बिहार से लिखते हैं, अगर आप बाहर कुछ भी खा पी रहे हैं तो जो बोतल है या जो थैलियां होती हैं वो आप अपने बैग में डाल लें या फिर पॉकेट में डाल लें। हम सब की यही आदत अगर है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसा वो करते हैं। भाई कितनी सुंदर बात है ना, और जागरूकता की भी बात है कि अगर हम ये सब करें तो अपने आसपास के वातावरण को भी साफ और सुंदर बना सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक संदेश है मंटू शर्मा जी का, और इन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तब सबसे पहले मैं मेरी क्लास की पूरी सफाई करके ही पढ़ाई शुरू करने की आदत थी उस समय सभी की। तो ये कितनी अच्छी बात है, एक एक किताब को हम प्लास्टिक कागज से डिजाइन पेपर से ढक के रखते थे ताकि बारिश में वो भीगे ना, फटे ना, और इस तरह हम अपनी कॉपी और किताबों को भी स्वच्छता के साथ जोड़ के रखते थे। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है, और इन्होंने लिख भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से अपना ये संदेश। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा है, स्वच्छता सोच की आदत बना और सब कुछ स्वच्छता रहे ऐसा गाओ। तो क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बनते हैं, और बिजली, पानी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारी सोच समझकर हमें इन्हें उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे आसपास कोई भी गंदगी ना फैले, और कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डाला जाए। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर और साफ हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसी तरह जीवन के साथ जुड़ी हुई जो स्किल है उसकी बात अब हम अपने अगले सेगमेंट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सूचना और तकनीक के इस युग में जब हम AI की बात करते हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान तो मानिए जैसे अनिवार्य ही है ना। फिर चाहे वो छात्र हो या अभिभावक, सभी के लिए तकनीक जो है वो जरूरी है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ऑफिस के काम, सरकारी दस्तावेज, आवेदन करना हो कहीं पर, या ऑनलाइन पेमेंट करना हो, डिजिटल शॉपिंग, छोटी बड़ी हर बात में डिजिटल स्किल शामिल है। लेकिन सिर्फ मोबाइल के प्रयोग से ही इसमें महारत नहीं मिल सकती, इसलिए इसके लिए कौशल के लिए शैक्षणिक योग्यता का अगर हम उपयोग करें, जिसके लिए अलग अलग कोर्स हमारी सरकार करा भी रही है, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर को चलाना हम सीखते जाते हैं जो हमारी कमाई का भी रास्ता बनता है। तो चाहे कोई किसान हो या कोई दुकानदार या कोई छात्र हो या गृहिणियां, डिजिटल कौशल से दुनिया के किसी भी कोने से कमाई करके सभी स्वावलंबी बन रहे हैं, है ना।

तो अपने ही फोन से ऑनलाइन फॉर्म भरना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, अपनी फसल और प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेचना और बैंकिंग को सुरक्षित रूप से UPI में चलाना, वो भी बिना कहीं गए। तो डिजिटल स्किल डिजिटल इंडिया जैसे अभियान का हिस्सा बनने वाला हर व्यक्ति जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बन रहा है। तो कहीं भी किसी भी बंधन से मुक्त होकर आप अपने इस कौशल के साथ आत्मनिर्भरता की डग भरिए, हम यही चाहते हैं।

सफर हम में से कई लोग रोज करते होंगे, है ना, क्योंकि दिल्ली मेट्रो आपकी अपनी ग्राहक सेवा और विशाल नेटवर्क के लिए हम सब के लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय बन चुकी है। हम में से अधिकांश लोग समय की बचत, किफायती कीमत और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो में सफर करते ही हैं। इसलिए दिल्ली मेट्रो के हर अपडेट के बारे में जानकारी हमारे सफर को और आसान बनाती है। इसीलिए आज हम बात करते हैं AI चैटबॉट वर्चुअल सारथी ऐप के बारे में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इस ऐप ने दिल्ली की रफ्तार में डिजिटल सुविधा को नई उड़ान दी है और इस डिजिटल साथी ने इसके साथ QR टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई है, वर्चुअल स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी है, यात्रा संबंधी सभी जानकारी, मेट्रो स्टेशन की जानकारी, यहां तक कि स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में भी, यानी यात्रा की प्लानिंग से लेकर मंजिल तक हर बात की जानकारी हमें मिलती है सारथी ऐप के जरिए। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है ना, तो अब चूकिएगा मत। बस इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खोलिए और अपनी आवाज में या फिर टाइप करके अपने गंतव्य संबंधित प्रश्न को आप पूछ सकते हैं यहाँ। जैसे सबसे छोटा रूट कौन सा है, आपके गंतव्य का किराया कितना होगा, आपका स्मार्ट कार्ड कैसे होगा रिचार्ज, यहाँ तक कि आपके नजदीकी स्टेशन के आसपास घूमने या दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी ये सारथी ऐप आपको दिलाता है। तो डिजिटल होता इंडिया और स्मार्ट बनती दिल्ली में आसान और सुगम सफर जब भी हो करना हमारी बताई इस जानकारी को अमल में लेकर लुत्फ उठा सकते हैं आप।

लता मंगेशकर की आवाज़ में चोर पुलिस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों। और अपने आसपास की चीज़ों को हम आपको अगर बांटने की बात बताएं तो कैसा रहेगा? जैसे हम अगर आपसे कहें पैसा आप देते हैं तो आपका वॉलेट खाली हो जाता है, और अगर कोई चीज़ किसी को देते हैं तो सामान कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ऐसे गणित से बिल्कुल दूर है, और जानते हैं वो क्या है? वो है हमारी खुशी। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो इस सुंदर भाव से अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देते हैं तो उस देने के भाव में छिपा जो सुख है वही सच्चा सुख है। इसीलिए

छोटी छोटी चीजों से खुशियों को समेटने की आदत हमें आनी चाहिए। किसी की तारीफ करना, किसी का हौसला बढ़ाना और किसी को देखकर प्यारी सी मुस्कान दे देना, बस इससे पूरा दिन बन जाता है। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ हम आज अपने कार्यक्रम में आपके लिए ये अंतिम गीत ऐसा ही कुछ आपको सुना रहे हैं।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए

0: बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देब ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करीब 3.5 साल बाद आज प्रमुख नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। ये बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के उद्देश्य से की गई है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely.
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: Home Minister Amit Shah has hailed the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public service and described it as a golden and historic day. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha Seva Jyoti Yatra in Gurugram today, he stated that under Prime Minister Modi's leadership, significant work was accomplished, including the abrogation of Article 370, the elimination of Naxalism, and the elevation of the country's infrastructure to the highest level. The Reserve Bank of India, RBI, today raised key benchmark repo rate by 25 basis points to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
3: after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 20

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11 और ये समय रहता है कलाकार बेमिसाल का। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल महिला संगीत निर्देशक उषा खन्ना की आज हम बात करेंगे और उनके ही संगीत निर्देशन से सजे गीतों को आप तक पहुंचाएंगे। फिल्मी दुनिया में उनसे पहले यूं तो दो महिला संगीतकार रह चुकी हैं, जद्दन बाई जी और सरस्वती देवी जी, पर निसंदेह उषा खन्ना ने एक लंबी पारी खेली और संगीतकार के तौर पर संगीतकार के रूप में अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई। उन्होंने पुरुष वर्चस्व फील्ड में उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति कायम रखी। ऐसे दौर में जब एक से बढ़कर एक नामी संगीतकारों का दबदबा रहा, उन्होंने अपनी सफल और संयमित पारी खेली। बस इन्हीं के बारे में ढेर सारी बातें और करेंगे आपके साथ। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

जाने माने संगीतकार उषा खन्ना की बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल्ड 100.1। जन्म इनका हुआ 7 अक्टूबर 1941 को ग्वालियर में। इनके पिता मनोहर खन्ना एक लेखक और गायक रहे, एक अच्छे लेखक और गायक। वे ग्वालियर रियासत के जल कार्य विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत भी रहे। किसी कारणवश उनका यानी कि उषा खन्ना जी के पिता का मुंबई आना हुआ और इनकी मुलाकात हुई जानी मानी शख्सियत जद्दनबाई से। जद्दनबाई जी बहुत अच्छे संगीतकार रहीं, जिनकी बेटी नरगिस एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं। जद्दनबाई ने इनसे नरगिस आर्ट प्रोडक्शन की फिल्म रोमियो जूलियट के लिए कुछ गजलें लिखवाई और अच्छा मेहताना भी दिया। बस मनोहर खन्ना जी ने हमेशा के लिए मुंबई का ही रुख कर लिया और उन्होंने मन बना लिया कि यही रहेंगे और यही फिल्मों के लिए काम करेंगे। मनोहर खन्ना ने जावेद अनवर नाम से फिल्मों में गजलें लिखना शुरू किया। इस तरह से घर पर ही संगीत का माहौल रहा और उषा भी इस माहौल में बहुत कुछ सीखती रहीं। उन्होंने संगीत की कहीं से बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली, पर हाँ पिता ने उन्हें हारमोनियम पर सारे गामा जरूर सिखा दिया था। उनके अनुसार यानी कि उषा खन्ना जी ने ही ये बताया कि सब कुछ गॉड गिफ्टेड रहा और वो बहुत अच्छी ऑब्जर्वर और लर्नर रहीं।

में दुनिया में प्रवेश करने की बात करें तो सबसे पहले लोकप्रिय संगीत निर्देशक ओपी नैयर ने उषा खन्ना को उस दौर के जाने माने प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से मिलवाया। कुछ महीनों बाद शशधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी फिल्म दिल देखी देखो 1959 की यह फिल्म रही, इस फिल्म के लिए एक संगीतकार के तौर पर अनुबंधित कर लिया। एज अ हीरोइन आशा पारेख जी की भी ये पहली फिल्म रही, डेब्यू फिल्म रही। हालांकि इससे पहले वो बाल कलाकार के तौर पर भी काम कर चुकी थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। गीत संगीत को भी लोगों ने काफी पसंद किया। बाद में आशा पारेख अभिनीत एक और फिल्म के लिए उषा खन्ना को संगीतकार के तौर पर साइन किया गया। फिल्म रही 1961 की हामिद उस्तानी। तो यहां पर भी एक गीत तो बनता ही है, दिल देखे देखो फिल्म, जिसमें कि पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट उषा खन्ना जी ने संगीतकार के तौर पर संगीत दिया।

जाने माने संगीतकार उषा खन्ना, जिनका इस वक्त जिक्र हो रहा है, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी गोल 100.1 कलाकार बेमिसाल का यह सफर। अंजलि है आपके साथ। हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचना शुरू करने के बाद उन्होंने काफी अच्छा काम किया, कई हिट नंबर्स दिए, पर फिर भी उन्हें संगीत निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। गायिका आशा भोसले और रफी साहब के लिए भी कई हिट सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए और इस तिकड़ी ने काफी अच्छा काम एक साथ में किया। इनके संगीत निर्देशन में रफी साहब ने दिल देके देखो 1959 की फिल्म, इसके लिए गीत गाए, हवस

74 के लिए गीत गाए और साजन की सहेली 1981, साथ ही 1980 की फिल्म आप तो ऐसे ना थे में कई बेहतरीन सॉन्ग्स गाए। एक और गीत यहाँ पर सुन लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे।

सावन कुमार अक्सर संगीतकार उषा खन्ना के गीतकार रहे और उनके ज्यादातर गानों के बोल लिखे। उन्होंने लगभग 11 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया जिसमें उषा खन्ना जी ने संगीत दिया। दोनों ने बाद में विवाह भी कर लिया पर यह शादी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। हालांकि दोनों के प्रोफेशनल रिलेशन काफी मजबूत रहे। बाद में भी अलग होने के बाद भी उषा खन्ना जी ने उनकी फिल्मों के जो गीत थे उसके लिए म्यूजिक कम्पोज किया। स्वतंत्र फिल्म के गीत तो आपको याद होंगे ही ना। फिल्म तो हिट थी, गीत संगीत भी इतना जबरदस्त रहा कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है इस फिल्म का गीत। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसी एक फिल्म का एक गीत हो जाए। लता जी और किशोर कुमार की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
1: पूजा,
2: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो।
3: पता ही बात अब सबको पता चल गई।
0: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
4: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
2: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
2: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
3: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए विक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
4: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए

जानी मानी संगीत निर्देशक उषा खन्ना जी का आज हम जिक्र कर रहे हैं। एज अ म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना काफी लंबे समय तक सक्रिय रही और उनकी आखिरी संगीतबद्ध फिल्म रही 2003 की दिल परदेसी हो गया, जिसका निर्माण और निर्देशन किया था सावन कुमार टाक ने ही। पार्श्व गायिका के रूप में भी उन्होंने कई गीत गाए। उषा खन्ना ने हिन्दी फिल्मों के अलावा दूसरी भाषाओं के फिल्मों के लिए भी जो गीत थे संगीतबद्ध किए। अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए उन्हें काफी मेहनत, काफी जैसे बोलते संघर्ष करना पड़ा, काफी जैसे बोलते बाधा उनको आई आगे बढ़ने में, लेकिन उन्होंने बस अपना काम, अपनी मेहनत, अपना हुनर दिखाया, जिसके सामने सब कुछ फीका हो गया। और इसलिए उन्होंने ना अक्सर नए गायकों को भी अपने संगीत निर्देशन में गाने का मौका दिया। यहां पर भी एक गीत तो बनता ही है, सुनते हवस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत यसुदास की आवाज में सुनेंगे फिल्म दादा से।

जानी मानी संगीत निर्देशक उषा खन्ना का जिक्र हो रहा है इस वक्त और उनके संगीतबद्ध गीतों को आपके लिए यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। 1960 से 80 तक के 3 दशकों में उषा खन्ना प्रोफेशनली काफी सक्रिय रही। 1959 में म्यूजिक कंपोजर के रूप में शुरुआत करने के 40 साल बाद भी वो कुछ फिल्मों और धारावाहिकों के लिए संगीत निर्देशन करती रही। उन्हें बेहद हिट मूवी 1983 की सौतन फिल्म के गीतों को संगीतबद्ध करने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। एक और गीत उनका संगीतबद्ध किया हुआ साजन बिना सुहागन फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

आकाशवाणी गोल्ड 100.1 और इस वक्त बातें हो रही हैं यहां पर संगीत निर्देशक उषा खन्ना की। उनके संगीत निर्देशन में बने बहुत सारे गीत, मैंने रखा है मोहब्बत फिल्म शबनम से, हम तुम कहते हैं जुदा होके, एक सपेरा एक लुटेरा, गा दीवाने, झूमके फ्लैट नंबर 9, छोड़ो कल की बातें हम हिंदुस्तानी फिल्म से, शायद मेरी शादी का ख्याल सौतन फिल्म से, और तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। आप तो ऐसे ना थे जैसे गीतों को सुनकर ना उनके बेहतरीन उम्दा जबरदस्त स्टाइल के म्यूजिक कंपोजिशन का पता लगाया जा सकता है। उनका अपना एक अलग अलहदा ही अंदाज रहा। उनके अनुसार उषा जी अरबी संगीत से प्रेरित रहा करती थी जो कि उन्हें काफी पसंद रहा, और ये जो इसका थोड़ा थोड़ा सा असर था ना, प्रभाव था ना, उनके म्यूजिक कंपोजिशन में दिखता था। उनके काम के प्रति जज्बे और जुड़ाव ने उन्हें अपनी एक मजबूत जगह दिलवाई फिल्म इंडस्ट्री में। उनका जीवन, उनका संगीत और एक महिला संगीतकार के रूप में उनकी अनूठी उपलब्धि कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। और चलते चलते होटल फिल्म से गीत सुनते हैं, कितना मतलब बोलते हैं प्यारा सा ये एक गीत है। मुझे लगता है शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा, शायद ही कोई म्यूजिक लवर होगा जिसे ये गीत ना पसंद हो। मुझे लगता है सभी को पसंद होगा, और सचमुच पर्सनली मुझे भी ये गीत बहुत पसंद है। बहुत मौके पे सुनते हैं और सुनवाते हैं इस गीत को। आप भी इंजॉय कीजिए इस गीत को।

इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहें हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू खबरें, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 बजे मेरी और आपकी होगी फिर से एक और मुलाकात संगीत.com।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाए। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमुई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मुजाहमत पर मरकूज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला

0: के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और इसे सुनहरी और तारीखी दिन करार दिया है। गुरुग्राम में आज विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दफा 370 की मनसूखी, मानवाजियत का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला मेयार सतह तक पहुंचाने जैसी अहम हसूलियाबियां हासिल हुई हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुहिम के हिस्से के तौर पर मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसके तहत नौजवान अफराद सेवा ज्योति यात्रा निकालेंगे और मुकर्रर मकामात पर मशाल नस्ब करेंगे। जनाब शाह ने सभी से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने गुजरात के सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का इनेकाद किया है। जनाब मोदी के अवामी खिदमत के 25 सालों में पहले गुजरात के वजीर आला और बाद में मुल्क के वजीर आजम के ओहदे का अरसा शामिल है। पूरे गुजरात में यात्रा निकलने के मकामात पर नई दिल्ली से विकसित भारत संकल्प सभा का वजीर आजम का खिताब लाइव नशर किया गया, जिसके बाद मकामी लीडरों ने यात्रा के बाजाब्ता आगाज के तौर पर सेवा ज्योति जलाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब टेली मौसलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इख्तरा के मैदान में खातिरखा पेशरफ्त को नुमाया करेगी। साथ ही इश्तराक, सरमायाकारी और मालूमात के तबादले का आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की शराकतदारी न सिर्फ आज के लिए की जा रही है, बल्कि ये आने वाली नस्लों के लिए भी है। राजधानी अक्रा में घाना के फॉरेन सर्विस के इदारे में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सफारत को मुसाबिकती रुझान से इस तरह निमटना चाहिए कि ये मफादात में इख्तलाफात के बावजूद टकराव की शक्ल अख्तियार न करके ताउन को फरोग दे। डॉ जयशंकर ने मुल्क में मईशत, बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में भारत की तरक्की को उजागर किया। उन्होंने इस जरूरत को उजागर किया कि भारत और अफ्रीका के नौजवान हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बने। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाईयों और जम्मू कश्मीर के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के तबसरे को मुस्तरद कर दिया है। अक़्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की 6वीं कमेटी में लोकसभा रुकन बिप्लब कुमार देव ने कहा कि ओआईसी मजलूम और जालिम के दरमियान फर्क करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान से फैलने वाली सरहद पार दहशतगर्दी से अपने लोगों की हिफाजत करने का हक हासिल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आलमी सतह पर गैर यकीनी के माहौल में बढ़ते हुए इफरात जर से मुताबिकत की खातिर रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। अपनी दो माही पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी एनएमपीसी ने इत्तेफाकी राय से पॉलिसी रेपो रेट में 0.25% के इजाफे का फैसला किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से सपहर 3:30 बजे तक दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर के दफ्तर पर होने वाले मुजाहरों के तनाजुर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर रह सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर कल एहतजाज के दौरान नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जबरदस्ती दाखिल होने पर दिल्ली पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई है। जराए के मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मुतालिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच का आगाज कर दिया गया है। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के कई अराकीन पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मकर द्वार से भारत के

चुनावी कमीशन के सदर दफ्तर तक एहतजाजी जुलूस की अपील की थी। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के वजीर आला के ओएसजी राजबब्बर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ तबादलों के बदले नकद रकम लेने, आईएएस और आईपीएस ओहदों के अफसरान की तकरीरों में मुदाखलत करने और इल्जाम की जांच में बदनुमानी करने से वाबस्ता मामलों में एफआईआर दर्ज की है। भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तरकदाम और पेरिस मुआहदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बात की जरूरत है कि मफाहमत में दूरी को खत्म किया जाए, आबोहवा से मुतालिक मौजूदा अजाइम को पूरा किया जाए और आलमी दर्ज हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ने देने के मकसद की जानब पेशरफ्त में तेजी लाई जाए। भारतीय महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज दिन में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कराईकल उत्तर प्रदेश में भी आज दिन में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाएं। आरबीआई ने 4 साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: damage to crops. This precipitation has led to a drop in temperatures and an increase in the chill. Snowfall has occurred on the high peaks of Lahul Spiti, Pangi and Kullu, while the high peaks of Pir Panjal range, including the Rohtang Pass, are now draped in a blanket of snow. According to the Meteorological Center in Shimla, a yellow alert has been issued for thunderstorms and lightning in the district of Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan for the next 4 days, while light snowfall is expected in Kullu and Lahul Spiti. With Ritesh Kapoor's report, Jigyasa Pandey, Akashvani News.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says present government's policy focuses on solutions for all citizens, addresses Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stresses the need for India and Africa to turn their young populations into skilled and empowered citizens. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
3: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
3: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
3: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही

0: चुनौती दे रहा था, लेकिन ये भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है। हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच, उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
5: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना

0: डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉ जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
2: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
3: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
2: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
1: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
4: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
5: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
4: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
6: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
4: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
1: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गीत संगीत फिल्में और उनसे जुड़े शानदार दिलचस्प किस्सों को लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए संगीत.com के इस सफर पर। सुन रहे हैं आप इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। अंजलि है आपके साथ। हंसते खिलखिलाते स्टूडियो में आए और कुछ ही देर में सबकी आंखें नम कर गए। ऐसा जादू रहा किशोर कुमार की आवाज में, माहौल ही बदल जाता था जब वो गाते थे। 1984 की फिल्म शराबी से जुड़ा ये वाक्या है। गीत मंजिलें अपनी जगह है। म्यूजिक कंपोजर बपिदा को लगा कि ऐसे भावुक गीत के लिए किशोर कुमार मूड कैसे बदलेंगे, क्योंकि जब वो स्टूडियो में आते थे तो बहुत ही हंसी खुशी का माहौल हो जाता था और ऐसे में कोई दर्दनाक गीत गाना, भावुक गीत गाना, दर्द से भरा गीत गाना लगता था कि बस मूड एकदम से बदल पाना मुश्किल सा होगा। बट जैसे ही उन्होंने किशोर कुमार ने माइक संभाला, पूरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो का माहौल ही बदल गया। गीत एक ही टेक में ओके हो गया। किशोर कुमार जब स्टूडियो से बाहर आए तो बप्पी लहरी सहित सभी साजिंदों की आवाज में और उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। ऐसा कमाल विरले ही कर पाते हैं, अपनी आवाज का जादू चला माहौल ही बदल देते हैं। चलिए शराबी फिल्म के इस गीत को सुन लेते हैं। 1984 की फिल्म है शराबी। गीत के बोल प्रकाश मेहरा साहब के हैं और बप्पी लहरी का संगीत है। इस गीत के शब्दों को अपने संगीत से उन्होंने इस तरह से सजाया है और सदाबहार आवाज तो है ही किशोरदा की।

रफी साहब की आवाज और उनकी गहराई और रेंज की अगर बात की जाए तो फिल्म बैजू बावरा का जो गीत है ना, ओ दुनिया के रखवाले को सुनकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इस क्लासिकल गीत में सुरों का जो उतार चढ़ाव है, दरअसल वो बहुत बहुत ज्यादा कठिन था और संगीतकार नौशाद इस गीत के साथ कोई समझौता नहीं चाहते थे। रफी साहब ने इस गीत के लिए 15 दिन तक रियाज किया था। रिकॉर्डिंग के वक्त उन्होंने इतनी ऊंची पिच यानी हाई नोट पर इस गीत को गाया कि उनके गले से खून तक आ गया था और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से वॉइस रेस्ट करने की सलाह दी थी। तो जनाब, ऐसे रहे ये महान दिग्गज गायक मोहम्मद रफी, परफेक्शन के लिए कुछ भी करेंगे। तो सुन लेते हैं इस गीत को। 1952 की फिल्म बैजू बावरा का ये गीत है। गीत के बोल शकील बदायूं के हैं और इन बोलों को संगीत से सजाया नौशाद अली ने। आवाज महान गायक मोहम्मद रफी की।

0: उसी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
1: पूजा,
2: अरे सुन क्यों नहीं रही, मुझे इग्नोर कर रही हो?
3: पता ही बात अब सबको पता चल गई।
0: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
4: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज इबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

संगीत.com आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि आपके साथ और बात करें 1968 की फिल्म नील कमल और इस फिल्म का गीत बाबुल की दुआएं, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज से यादगार गीत बना दिया। जब मोहम्मद रफी इस गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और गीत गाते गाते सचमुच वो स्टूडियो में रो पड़े थे। इस गीत के बोल ही इतने मर्मस्पर्शी हैं कि जो भी सुनता है ना उसकी आंखें नम हो ही जाती हैं। रफी साहब के साथ एक और वजह ये रही इस गीत को जब वो गा रहे थे तो कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और पिता होने के नाते इस गाने के दर्द और भावनाओं से वो इस कदर जुड़ गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इस बेहतरीन गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। बोल के गीत साहिर लुधियानवी के, फिल्म नील कमल है, संगीत दिया है इस गीत के लिए रवि ने और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, तो इस गीत को पहुंचा रहे हैं आप तक।

1971 की फिल्म जाने अनजाने के एक गीत की बात करेंगे, जाने अनजाने लोग मिले मिला ना कोई अपना। शम्मी जी की आवाज उस वक्त तक बन चुके थे मोहम्मद रफी साहब, पर फिल्म के इस गीत ने शमी कपूर को भी चौंका दिया था, क्योंकि इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। गीत की रिकॉर्डिंग के बाद शमी कपूर ने किशोर कुमार को कहा कि अरे भाई किशोर, एक गीत तो सुनवा दो। किशोर कुमार थोड़ा घबराए, पर शमी कपूर ने ये गीत एक बार नहीं 3-4 बार सुना और सुनकर किशोर कुमार को गले से लगा लिया और पूछा कि गाने में इतना दर्द आप कैसे लाते हो। बस यही बात इस मुलाकात को यादगार बना गई हमेशा के लिए। सुनते हैं इसी इंटरेस्टिंग गीत को जिसने शमी कपूर के दिल को भी झकझोर दिया और बाद में किशोर कुमार साहब ने फिल्म विधाता और अरमान में शमी कपूर के लिए कुछ हिट नंबर्स गाए। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, आवाज किशोर कुमार की। फिल्म जाने अनजाने का ये बेहतरीन नगमा पहुंच रहा है आप तक।

इसी तरह की एक दास्तां जुड़ी है 1975 की फिल्म खुशबू के गीत के साथ, गीत ओ माझी रे अपना किनारा। पंचम दा यानी कि आर डी बर्मन चाहते थे कि गीत में ऐसा दर्द उतरे कि जिंदगी का पूरा दर्दमय भाव इसमें महसूस होने लगे। बस जैसे ही किशोर कुमार ने इस गीत को गाने की शुरुआत की, स्टूडियो की दूसरी तरफ बैठे

आर डी बर्मन अपने आप को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कहते हैं कि उन्होंने दीवार पर अपना हाथ मारकर कहा था कि ये आदमी सिंगर नहीं, भावनाओं का समंदर है। फिल्म में ये खुशबू का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, गीत के बोल गुलजार के हैं और इन बोलों को संगीत से सजाया आर डी बर्मन साहब ने, सदाबहार आवाज किशोर कुमार की, और गाने का जो रिदम था ना, एक नाव की पतवार की गति पर ही बनाया गया था। तो ये बहुत ही देखने में विजुअलाइज भी जब करते हैं इस गीत को तो बहुत ही सुंदर और शानदार दृश्य आंखों के सामने आता है। जितेंद्र बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पर और आवाज़ तो दिल को छू ही लेती है किशोर कुमार की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान

0: सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले आज फिजी में आयोजित एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। साथ ही वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना भी जरूरी है। श्री यादव ने क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन के पर्याप्त साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर में वृद्धि करके इसे 0.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया था, हालांकि 2025 में इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस वर्ष का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार, बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो संदेश में कपास क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर प्रदेश में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens. He said, India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He said that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi noted that earlier efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He said that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said that such transformation is possible when the intent is clear and policies are well defined.
3: देश के